सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय सुबह के ठीक 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष

0: अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए वंदना कार्यक्रम।

ज्ञान ज्योति जैसे जलमही कमल निरालम मुर्गाई नैसाणी सुरति सबदि भव सागर तरिये नानक नाम वखाणे। अर्थात जैसे कमल का फूल तालाब में होता है, तालाब के पानी से ही अपना आहार लेता है, परंतु अपनी पंखुड़ियों को कभी तालाब के पानी से गीला नहीं होने देता। या फिर जैसे मुर्गा भी पानी में ही तैरती है और जब शिकारी उस पर निशाना लगाता है तो वो झट से पुनः पानी में डूब जाती है, परंतु जब पानी से बाहर आती है तो इसके पंख एकदम सूखे होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में रहना चाहिए। संसार में रहना है पर संसार के सुख दुख के वशीभूत नहीं होना है, अर्थात उन्हें अपने मन में स्थान नहीं देना है। मन में स्थान देना है तो सिर्फ ईश्वर भक्ति को। ज्ञान ज्योति। तो अब आइए हम भी ईश्वर भक्ति में मन लगाते हैं। वंदना कार्यक्रम में भजनों की शुरुआत करते हैं।

जी, संत महापुरुष हमें हमेशा यही उपदेश देते हैं कि आत्मा का इस संसार की किसी भी वस्तु से स्थायी संबंध नहीं है। यदि उनके उपदेशों के इस सार को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो हमारे लिए कोई दुख नहीं रहेगा और हम आनंद और शांति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

वंदना कार्यक्रम इस समय आकाशवाणी हमीरपुर से प्रसारित किया जा रहा है। समय आपको बताएं, सुबह के 6:32 और 5 सेकंड हुए हैं। आइए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनते हैं।

वंदना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं और भक्ति क्रम में यूं ही आगे बढ़ते हुए आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ भाग एक।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल,

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:51 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरील होने वाली शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी कि 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनिएगा। समाचार प्रभात का अंक सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:30 पर हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुन सकते हैं। 8:35 से लेकर 9:20 तक विविध भारती के कार्यक्रम हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 9:30 से लेकर 10:00 तक सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 10:05 पर लघु वार्ता होगी। 10:15 पर महफिली कव्वाली कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा कुछ फिल्मी कव्वालियाँ। 10:45 पर लोकरंग कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 11:05 से लेकर 12:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। 12:00 वनिता मंडल कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। 12:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और 1:00 से लेकर 5:00 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसी दौरान 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 3:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 5:00 हिंदी में समाचार आकाश

0: आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। युग मंच कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:30 पर। 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर कार्यक्रम सुनिएगा सफर सुहाने गाने नए पुराने। खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ फिल्मी भजन। रौनका ग्राएं दिया कार्यक्रम 7:25 पर प्रसारित किया जाएगा। 7:45 का समय रहता है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करते हैं। रात्रि 8:00 से लेकर 8:45 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, 9:00 News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 9:15 से लेकर 10:00 तक आनंद उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। रात्रि 10:00 आज शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 10:30 पर चांदनी रात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:55 होने के हुए अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मंचस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृहसहकारितामन्त्री अमितशाहः पुनरेकदा अवैधप्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 40,30,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिमबंगालसर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमासुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणां उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनी ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे

0: उपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के

0: दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:06:30 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम लेकर। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हो चुकी है कार्यक्रम की शुरुआत, और शुरुआत एक अच्छे से विचार के साथ होती है, और विचार के रूप में आज आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। एक बार उसे भेंट में एक बकरी मिली। किसी ने गिफ्ट किया उसे, जिसे वो कंधों पर लादे खुशी खुशी घर आ रहा था। अब रास्ते में 3 ठगों ने उसे देखा तो बकरी हड़पने की योजना बनाई। एक ठग ने उसे जाकर कहा कि तुम ये सिर पर एक कुत्ता क्यों लादे जा रहे हो? व्यक्ति ने नाराज होकर कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कुत्ता नहीं, बकरी है, बकरी। ठग चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग निकल कर आया और उसने भी यही कहा कि सिर पर कुत्ता लादे क्यों फिर रहे हो महाशय? इस बार वो व्यक्ति उसकी बात से संशय में पड़ गया, कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गया। अब तीसरा ठग आया और उसने भी वही बात दोहराई, और तब वो व्यक्ति डावाडोल हो गया और सोचने लगा कि हो ना हो मैं ही भ्रमवश बकरी के बजाय किसी कुत्ते को उठा लाया हूँ, क्योंकि भाई 3-3 लोग गलत नहीं हो सकते। तो वो बकरी को वहीं छोड़कर भाग गया, और उसके जाने के बाद तीनों ठगों ने ठहाका लगाया और उसकी बकरी को हथिया लिया। अब इस कहानी से सीख हमें क्या मिलती है? यही कि दूसरों की बातों में आकर हमें कभी बहकना नहीं चाहिए और उन लोगों के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। और अक्सर आजकल होता भी ऐसे ही है, हम दूसरों की बातों में ज़्यादा आते हैं, अपने ऊपर विश्वास कम रखते हैं, है ना? अपने आप हम अगर कोई सही कार्य कर भी रहे हों, लेकिन दूसरे अगर कहें कि भाई तुम ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो हम सोचते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है, अच्छा ही अच्छा नहीं है, छोड़ देते हैं इस काम को, है ना? तो हमें जो है वो खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लोग कहते हैं, कहते रहेंगे, ये दुनिया का उसूल है, लेकिन हमें अपनी अच्छाई बुराई, सुख दुख, अच्छा बुरा समझने की परख होनी चाहिए, है ना? दूसरों की बातों में ना आकर अपने पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हम अगर कुछ काम आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। और इस दुनिया में कहते हैं ना कि हौसले और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है।
2: Ain't nothing is impossible. Bye, bye, bye.

नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। आओ यारो डांस करें, रिजन पे रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, रिजन पे रोमांस।

0: कहता हूँ मैं सच बिल्कुल,
1: कहता हूँ मैं सच बिल्कुल।
0: आओ यारो डांस करे,
1: आओ यारो डांस करे,
0: सिजम से रोमांस करे,
1: सिजम से रोमांस करे।
0: नाचो मेरी जान,
1: नाचो मेरी जान,
0: कम ऑन कम ऑन।
2: बिल्कुल जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और ये गीत किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, बप्पी लहरी और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। फिल्म का नाम था जख्मी। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: क्या आपके
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: बड़ी बहू,
9: ये तुम्हारी ना,
8: इतनी भी क्या जल्दी थी?
9: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
8: और ये मेरी बुढ़िया के नाम।
10: पर दादी,
8: हाँ,
10: आपके नाम?
11: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
9: शुभ शुभ बोलो।
10: क्या
11: RBI कहता है?
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
14: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जी, तो इस अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। समय आपको बताएं, सुबह के 7:18 हुए हैं और अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास की बातें करते हैं। आज 29 मई का दिन है और आज के दिन के साथ कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए आपको बताते हैं।

आज के इतिहास की हम बात करें तो सबसे पहले 1953 की बात करें 29 मई की, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ये पहली व्यक्ति बने 1953 में एवरेस्ट पर पहुंचने वाले, आज ही के दिन 29 मई को। यूनाइटेड रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट 1970 में किया था आज ही के दिन, और आज ही के दिन 29 मई को यूरोपियन फुटबॉल कप के फाइनल को लेकर 1985 में हुए दंगों में 39 खेल प्रेमी मारे गए थे। नाइजीरिया में नागरिक सत्ता की स्थापना 1999 में हुई थी, और बात करें वर्ष 2004 की तो 29 मई के दिन म्यांमार में चक्रवाती तूफान ने 140 लोगों की जान ली थी, और पाकिस्तान ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर 2004 में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी थी। जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स वर्ष 2007 में बनी थी आज ही के दिन। और अमेरिका और भारत के बीच सितंबर 2008 में हुए 123 एग्रीमेंट में छोड़ दिए गए परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग के पहलू पर अमेरिकी प्रशासन ने सहमति का ऐलान 2010 में किया था आज ही के दिन। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लुओयांग में पहली सदी के प्राचीन श्वेताश्व व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण वर्ष 2010 में किया था आज ही के दिन 29 मई को। और आज ही के दिन सन 1972 में, हम आपको बताएं, हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था वो पृथ्वीराज कपूर, उनका आज के दिन निधन हुआ था। और आज के दिन को यानी कि 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में। जी हाँ, हर साल 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को पहली बार सफलतापूर्वक फतह करने की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है। ये दिन पर्वतारोहियों के साहस, उनकी सहन शक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। और 29 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी, इसका आरंभ जो है वो 1948 में किया गया था, और इसने अपने पहले ही मिशन 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करती है। इसमें दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा महासभा द्वारा निर्धारित जनादेशों की श्रृंखला को संबोधित करने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत किया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। नवंबर 2021 तक भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य और पांचवा सबसे बड़ा पुलिस योगदान देने वाला देश है। और वर्ष 1948 से दुनिया भर में स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से 39 में से 2,00,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है। भारत में महिलाओं को यूएन शांति मिशन में भेजने की लंबी परंपरा रही है। वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया। शांति अभियानों के हिस्से के रूप में कई देशों में अपनी उपस्थिति के बावजूद भारत ने श्रीनगर और इस्लामाबाद में मुख्यालय वाले एक समान मिशन पर नियमित रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह की स्थापना जनवरी 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की निगरानी के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र

राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा की। ये उन लोगों की स्मृति को भी सम्मान देता है जिन्होंने शांति के नाम पर अपनी जान गंवाई। जी, तो ये आज के दिवस के बारे में हमने आपको बताया कि 29 मई को हम कौन कौन से दिवस मना रहे हैं और 29 मई के इतिहास की जानकारी हमने आपको दी। और अब आइए आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ।

0: ये सुदास अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में सुन सजना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हिमाचल की वादियों में।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: जी सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों से ताजा तरीन खबरों की बातें करते हैं।

सबसे पहली खबर की हम बात करें तो नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच 21 जून को होने वाले रीटेस्ट में देखिए अब एक बदलाव आया है। रीटेस्ट के पेपर के परिवहन में वायुसेना मदद करेगी। पिछली परीक्षाओं में डाक विभाग, गृह मंत्रालय की प्रमुख भूमिका थी और इसमें ये बदलाव किया गया है कि अब रीटेस्ट के पेपर के परिवहन में वायुसेना मदद करेगी। एनटीए ने फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स देने की डेडलाइन 22 जून रात तक कर दी है। पहले ये डेडलाइन 27 मई तक थी। और वहीं हम बात करें सीयूईटी यूजी की, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी की संशोधित परीक्षा तारीखें घोषित कर दी हैं। ये परीक्षाएं अब 31 मई, 6 जून और 7 जून को होंगी। 31 मई की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 28 मई को होने वाली परीक्षा ईद के कारण टाल दी गई थी। गर्मी में तेज धूप से राहत के लिए दिल्ली में सोलर पावर वाली पब्लिक कूलिंग हट बनाई जाएगी। झोपड़ी के आकार में डिजाइन किए गए इस स्ट्रक्चर में चारों ओर पारंपरिक खस घास की पेंडिंग होगी। स्प्रिंकलर सिस्टम भी होगा ताकि अंदर बैठे लोगों को प्राकृतिक ठंडक का एहसास हो। अगली खबर की बात हम करें तो कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवा देने वाले लांस हवलदार हरभजन सिंह और दक्षिण सूडान स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को ड्यूटी पर सर्वोच्च बलिदान के लिए यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रतिष्ठित डैग हैमरशोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। दोनों भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 5 जून को ये सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा गुटेरेस भारत की मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार देंगे।

जी, एक और ख़बर की हम बात करें तो देखिए, पिछले कल जो है वो मशहूर शायर बशीर बद्र जी का निधन हुआ। उर्दू की दुनिया का एक दरवाज़ा आज बहुत ही धीरे से पिछले कल बंद हो गया और लगा कि उस दरवाजे से जाते हुए किसी ने आखिरी बार मुड़कर कहा हो, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो। जी हाँ, बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सच तो ये है कि कुछ लोग कभी जाते नहीं, वे भाषा की नमी से घुल जाते हैं। और बिल्कुल उनके बारे में हम बात करें, दीवारों पर टिके पुराने कैलेंडरों, आधी रात की तन्हाई, बिछड़ने की तहों और प्रेम के संकोची क्षणों में धीरे धीरे बोलते रहते हैं। और जब वो चले गए हैं तो लगता है भाषा के आंगन में उर्दू की धूप थोड़ी कम हो गई है, फिर भी उनके शेर हमारे साथ रहेंगे हमेशा। किसी अकेले आदमी के कमरे में, किसी प्रेमिका की आंखों में, किसी ट्रेन की खिड़की के पास बैठे यात्री के साथ, और शायद तभी कहीं दूर से फिर वही आवाज़ आएगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

जी, और अब बात करें हिमाचल की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के दूसरे चरण का मतदान वीरवार को यानी कि पिछले कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 1276 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से मतदान कराया गया। प्रदेश में कुल 17,28,398 मतदाता थे, जिनमें से 13,74,209 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 7 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 80% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव में युवाओं के साथ साथ 100 साल से अधिक की उम्र के मतदाताओं में भी वोट डालने का जोश खूब दिखा। और वहीं आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार शाम यानी कि आज शाम प्रचार थम जाएगा। अब शनिवार को प्रदेश की 1189 पंचायतों में मतदान होना है। तीसरे चरण में विभिन्न पदों के लिए कुल 6,615 वार्डों में मतदान होना है। इस चरण में करीब 17,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला परिषद और बीडीसी सदस्य पद के लिए बड़े मतों की गिनती जो है वो 31 मई को होगी। और अब बात करें मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश में आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जो 30 मई तक रहेगा। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और अंधड़ और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। और बीते 24 घंटे के दौरान बात हम करें उसकी, तो राज्य के अधिकांश इलाकों में गर्मी का प्रकोप रहा। इस दौरान ऊना का अधिकतम तापमान सर्वाधिक 44 डिग्री, सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच राज्य के 10 शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। शिमला के तापमान में भी सामान्य से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस

से यहां का पारा 29-30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विक्षोभ के चलते आज और कल ज्यादातर भागों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 29 मई को कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में मौसम खराब रहेगा। जी, ये कुछ खास खबरें थी जो समाचार पत्रों से हमने आप तक पहुंचाई। अब आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत।

आशा भोसले किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। जबरदस्त फिल्म से हमने ये गीत लिया था, जबरदस्त सा गीत था। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय आपको बताएं सुबह के 7:43 और 40 सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं खेल खबरों को।

कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी सबसे पहली खेल खबर की हम बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रागनंदा ने नार्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। ये प्रागनंदा की कार्लसन पर क्लासिकल फॉर्मेट में दूसरी जीत है। इसके साथ प्रागनंदा के 4.5 अंक हो गए हैं और वे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और वहीं बात करें चेस की ही तो नार्वे चेस टूर्नामेंट के महिला वर्ग में भारत की युवा स्टार दिव्या देशमुख ने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिव्या ने अपनी मानसिक मजबूती का शानदार परिचय देते हुए टूर्नामेंट की लीडर कजाखस्तान की बिबिसारा ओसेबा येवा को आर्मागेडन टाई ब्रेक में मात दी। इस टूर्नामेंट में ये दिव्या की तीसरी आर्मागेडन जीत है और इस अहम जीत के साथ दिव्या 4.5 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं और उन्होंने शीर्ष पर काबिज बिबिसारा से अपना फासला काफी कम कर लिया है। जी बात करें आईपीएल की तो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी का परिचय दिया और इससे तहलका मचा दिया है। T20 में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बैटर ने एक आईपीएल में 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 550 से ज़्यादा रन बनाए। वैभव इस सीज़न में 242.35 के स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। 15 पारियों में 65 छक्के लगाकर वो किसी भी टूर्नामेंट में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बैटर बन गए हैं। बेबी बॉस ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के आईपीएल 2012 में बनाए गए 59 छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। वैभव की बल्लेबाजी को बयां करने के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जैसे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। जी हाँ, 90% रन बाउंड्री से बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज वो बन गए हैं। जी आईपीएल की आज की हम बात करें तो आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 में शुक्रवार को यानी कि आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जंग होगी। मल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से ये मैच जो है वो होने वाला है और इस मैच की विजेता टीम फाइनल में जगह बनाएगी जहां उसकी भिड़ंत जो है वो रविवार को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी। जी आगे अगली खेल खबर की बात हम करें तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर फ्रेंच ओपन में उलटफेर का शिकार हो गए। टाइटल के प्रबल दावेदार और टॉप सीड सिनर को दूसरे राउंड में अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सेरुंडोलो ने 5 सेट में हराकर भार कर दिया। वर्ल्ड नंबर 54 सेरुंडोलो ने 3-6, 6-2, 6-7, 5-6, 1-6, 1 से जीत दर्ज की। सिनर साल 2000 में आंद्रे आगासी के बाद इस टूर्नामेंट के शुरुआती 2 दौर में हारने वाले पहले पुरुष वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं और इसके साथ ही उनका लगातार 30 मैच जीतने का सिलसिला भी थम गया। बात करें फुटबॉल की तो 24 साल बाद ब्रिटेन की धरती पर उतरी भारतीय फुटबॉल टीम को यूनिटी कप के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। जमैका ने भारत को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई और अब भारत 30 मई को तीसरे स्थान के मुकाबले में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा। जमैका के लिए कोर्टनी क्लार्क ने 8वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई और इसके बाद 78वें मिनट में काहिम डिक्सन ने दूसरा गोल दागकर जीत पक्की कर दी। और बात करें बैडमिंटन की तो भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को एक तरफा मुकाबले में 21-9, 21-12 से हराया और ये मैच सिर्फ 37 मिनट तक चला। अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना दक्षिण कोरिया की शीर्ष वरीय खिलाड़ी आन से यंग से होगा। इस सीजन में ये सिंधु का 4था क्वार्टर फाइनल होगा और इसके पहले वे मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया मास्टर्स और थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच चुकी हैं। जी ये कुछ खास खेल खबरें थी जो हमने आप तक पहुंचाई समाचार पत्रों से। और अब एक अंतराल, उसके बाद विज्ञान पर चर्चा करेंगे।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जी सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। इस समय आपको बताएं सुबह के 7:50 हुए हैं। आइए अब विज्ञान पर चर्चा करते हैं। देखिए, आंध्र के विजयवाड़ा से देश के पहले स्वदेशी सुपर प्रेशर विस्टा प्लेटफॉर्म यानी कि हाइड्रोजन बैलून की लॉन्चिंग जो है वो सफल रही है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत अब अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के बाद पांचवा देश बन गया है। हैदराबाद की रेड बलून एरोस्पेस ने अपनी शुरुआत के 8 माह में ये उपलब्धि हासिल की। पृथ्वी से 25 किलोमीटर ऊपर तैरने वाली ये तकनीक पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के मुकाबले पृथ्वी से 99.93% ज्यादा करीब रहकर काम करती है। जी हाँ, सैटेलाइट से 90% सस्ता है। ये दूर दराज क्षेत्रों में सस्ता इंटरनेट जो है वो पहुंच सकता है। ये सैटेलाइट के मुकाबले में 90% कम खर्च में दूर दराज इलाकों तक बेहद सस्ता और तेज इंटरनेट पहुंचाएगा और ये उड़ता हुआ टावर हवा में 24 घंटे से लेकर महीनों स्थिर रहकर चक्रवात जैसी आपदाओं की चेतावनी देगा। तो ये है हमारा देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर हाइड्रोजन बलून जो कि लॉन्च हो चुका है और इसकी विशेषताएं भी हमने आपको बताई कि क्या इससे हो सकता है। हमारे देखिए वैज्ञानिक जो हैं वो नित नए शोध करते रहते हैं और हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहते हैं और हम इस नए शोध में, नई निजात में जो है वो अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। तो चलिए, ये विज्ञान पर चर्चा थी आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में और अब आइए एक गीत सुन लेते हैं।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है अब समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की जानकर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
3: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे

0: मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
8: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
7: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
9: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
7: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हमीरपुर जिला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी और जिला परिषद के अलावा वार्ड सदस्यों के लिए हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला की 82 पंचायतें में 74.94% कुल मतदान हुआ। फर्स्ट वोटर, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन पंचायतों में प्रधान एवं उप प्रधान के 82 पदों, पंचायत वार्ड सदस्यों के 466 पदों और इनके अंतर्गत जिला परिषद और बीडीसी के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हुआ। सभी 466 मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया और मतदाताओं की लंबी लाइनें देखने को मिली। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि पहले 2 घंटे में 20.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 11 बजे तक 43.63% और दोपहर 1 बजे तक 62.46% मतदान हो चुका था। मतदान की समाप्ति तक ये आंकड़ा लगभग 74.94% तक पहुंच गया। कुल 125,768 में से 94,245 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें महिलाओं की संख्या 51,423 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,822 रही। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में जिला हमीरपुर की 77 ग्राम पंचायतों में वीरवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इन पंचायतों में प्रधान एवं उप प्रधान के कुल 154 पदों और पंचायत सदस्यों के कुल 429 पदों के अलावा इनके अंतर्गत आने वाले जिला परिषद और बीडीसी वार्डों के लिए भी मतदान होगा। नादौन ब्लॉक की 20 पंचायतों में 110 बूथ बनाए गए हैं। बिजड़ी ब्लॉक की 15 पंचायतों में 87 बूथ, बमसन ब्लॉक की 8 पंचायतों में 42 बूथ, भोरंज ब्लॉक की 14 पंचायतों में 82 बूथ, हमीरपुर ब्लॉक की 12 पंचायतों में 66 बूथ और सुजानपुर ब्लॉक की 8 पंचायतों में 42 बूथ बनाए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश के 150 वन विश्राम गृहों यानी कि रेस्ट हाउस को ऑनलाइन बुकिंग के लिए खोल दिया है। अब पर्यटक इन रेस्ट हाउस की बुकिंग वेबसाइट hpecotourism.com पर कर सकेंगे। अभी तक कुछ सर्किल में ये सुविधा थी। विभाग का दावा है कि इन रेस्ट में होटल स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में वन विभाग के कुल 450 रेस्ट हाउस हैं, जिनमें से पहले चरण में 150 रेस्ट हाउस को इको टूरिज्म के तहत विकसित किया गया है। विभाग के अनुसार इस पहल से प्रदेश में इको टूरिज्म को नई गति मिलेगी। विभाग ने इन रेस्ट हाउसों के संचालन, रखरखाव और नियमों के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित DFO यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को सौंपी है। वहीं कमरों की बुकिंग तय दरों पर होगी। हालांकि पर्यटकों की मांग और सीजन के अनुसार संबंधित DFO को किराया बढ़ाने का अधिकार भी दिया गया है। मुख्य अरण्यपाल शिमला के थिरुमल ने बताया कि वन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेस्ट हाउसों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा है ताकि

आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला फिर बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। 13 जून को यहां भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए एचपीसीए ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बार स्टेडियम में T20 नहीं बल्कि पूरे 100 ओवरों के हिसाब से पिच तैयार की जा रही है। एचपीसीए के अनुभवी पिच क्यूरेटर सुनील चौहान वनडे मुकाबले को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति के तहत पिच तैयार कर रहे हैं। एचपीसीए के सचिव मनुज शर्मा ने बताया कि बीसीसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार जून के पहले सप्ताह में टिकटों की बिक्री शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ई टिकट और हार्ड टिकट व्यवस्था को लेकर अभी विचार विमर्श चल रहा है। बैठक के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मैच के लिए केवल ई टिकट व्यवस्था लागू की जाएगी या फिर हार्ड टिकट व्यवस्था भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:20 तक आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया में शांति बनाए रखने वाले सैनिकों के साहस और सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे यंगिस्तान फिल्म से गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, जीत गांगुली का संगीत।

अभी आप सुन रहे हैं गोरी तेरे प्यार में। इस फिल्म से गाना नितेश कदम और श्रुति पाठक की आवाजों में, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बेहतरीन कलाकार का बर्थडे, जिन्होंने मकबूल, एक डॉक्टर की मौत, गांधी हल्ला बोल जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ इनका टेलीविजन सीरियल ऑफिस ऑफिस भी बहुत चर्चित रहा। हम बात कर रहे हैं एक्टर पंकज कपूर की। सुखविंदर सिंह और रंजीत बोरात की आवाज़ में आप सुन रहे हैं मटरू की बिजली का मंडोला। फिल्म से गाना गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत।

आप सुन रहे थे शानदार फिल्म से ये गाना। इस फिल्म में पंकज कपूर नजर आए अपने बेटे शाहिद कपूर के साथ। जानिए इनकी जिंदगी के बारे में कुछ और किस्से, कुछ बातें आज के फनकार कार्यक्रम में रात 9:30 पर। आप सुन रहे हैं 10 फिल्म से ये गाना शान और केके की आवाज में। म्यूजिक विशाल शेखर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी फिल्म से, कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली।

0: मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम।

0: उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 80% रहा मतदान। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण का मतदान कल 30 मई को 1187 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। चंबा जिला में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो गया। इस दौरान मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायती राज चुनावों में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1279 पंचायतों में वोट डाले गए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। इस दौरान कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86%, जबकि सबसे कम लाहौल स्पीति में 79% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। कुल्लू जिला में सर्वाधिक महिला मतदान दर्ज किया गया, जो लगभग 86% रहा। पंचायत स्तर पर सोलन जिला के नालागढ़ के ढेला पंचायत में सबसे अधिक 96% मतदान दर्ज किया गया। 9 जिलों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रहा। यह मतदान प्रतिशत वर्ष 2021 के चुनाव के दूसरे चरण की तुलना में 4% अधिक रहा। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
0: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणात्मकपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ये पहल राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद भर रही है ताकि इनकी कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। चंबा जिले में नशे एवं नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम तथा उनकी धरपकड़ हेतु कार्यतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने आवश्यक पग उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिटाव एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान के तहत एनडी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2026 में अब तक 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए चंबा द्वारा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने, उचित स्थानों पर शिकायत पेटियां स्थापित करने तथा समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं

0: इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को बस अड्डों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर नक्शा मुक्ति और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा नशे की तस्करी रोकने हेतु विशेष रूट्स पर परिवहन निगम की बसों में कैमरे स्थापित करवाने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का कल 30 मई को हिमाचल दौरे पर रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे बिलासपुर जिला के विजयपुर में पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा राजकीय प्राथमिक पाठशाला विजयपुर स्थित अपने बूस्टर पर परिवार सहित मतदान करेंगे। कल पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। यह चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्यों के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट किया है। गोविंद सागर और कोल डैम जलाशय में 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मत्स्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान मछली का शिकार करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग के अनुसार प्रतिबंध का उद्देश्य मछलियों की प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित रखना और जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। शिमला के गेटी थिएटर में 8 से 12 जून तक अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत रंगमंच उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त जिला शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि यह आयोजन हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत, लोककला और रंगमंच परंपरा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कल हुए मतदान से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, दूसरे चरण में रिकॉर्ड 80% मतदान, 1276 पंचायतों में चुने गए जनप्रतिनिधि। दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 80% मतदान, कुल्लू में सबसे ज्यादा 86%। दैनिक जागरण के शब्द है, बादलों की छाव में मतदान के लिए उत्साह। हिमाचल दस्तक की खबर है, 1 जून से फिर शुरू होगा भारत चीन बॉर्डर ट्रेड, शिपकिला दर्रे के माध्यम से पुनर्जीवित होगा सीमा व्यापार। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, गर्मी से राहत, आज से बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज तूफान चलने की चेतावनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 80% रहा मतदान। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण का मतदान कल 30 मई को 1187 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। चंबा जिला में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं, अब से लेकर 10 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी गई इस निशानी को पहचानने दिल्ली लाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करो कि तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी है।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या जलीला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू, मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

दोस्तों रुपहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में कभी उस पग में।
4: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 10

0: स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की लघु वार्ता। आज की लघु वार्ता का विषय है जंगलों की आग और उसकी रोकथाम।

आज की लघु वार्ता के साथ हाजिर हूं मैं भावना कत्ना। आज की लघु वार्ता का विषय है जंगलों में बढ़ती आग और उसकी रोकथाम। दुनिया के कई हिस्सों में भीषण आग से लगने से धरती पर जंगलों का सफाया हो रहा है। पिछले कुछ सालों से गर्मी के कारण कई देशों में जंगलों के एक बड़े हिस्से में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से अब तक सैकड़ों किलोमीटर के जंगल जलकर खाक हो गए हैं। जंगल की आग या वनाग्नि के पीछे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया को जंगल की धधकती आग ने और बड़े संकट में डाल दिया है। दुनिया के कुछ सबसे ठंडे क्षेत्रों में 2021 में जंगल की आग में लगातार वृद्धि हुई है। जंगल ही हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं, इसीलिए जंगल में आग लगने की लगातार हो रही घटनाओं से समस्त जीवों के लिए संकट खड़ा हो गया है। डाउन टू अर्थ, जी हाँ, इसके में एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2021 तक जंगल की आग से लगभग 1.76 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था और इस वजह से हवा में जहरीला धुआं घुल रहा है। आग लगने की घटनाओं को लेकर वन विभागों ने दावा किया है कि इनमें से कई घटनाएं मानव निर्मित भी होती हैं। कभी कभी जानबूझकर भी जंगलों में आग लगाई जाती है। जंगलों में आग लगने की घटनाओं ने भारत समेत दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों को चिंता में डाल दिया है। जंगल में धधकती आग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, इसीलिए हमें इसके रोकथाम के उपचार करने हैं। जंगलों में अनियंत्रित रूप से फैलने वाली आग को वनाग्नि या फिर जंगली की आग कहा जाता है। इसमें पौधे, जानवर, घास के मैदान, जो भी उसके रास्ते में आते हैं, सब जलकर राख हो जाते हैं। जंगलों में चलने वाली तेज हवा के कारण ये आग अनियंत्रित होकर बड़े भूभाग में फैल जाती है, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है। जंगल में लगने वाली आग आमतौर पर लंबे समय तक जलती रहती है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन होता है। ये आग जंगल में स्थित सूखी लकड़ियां या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के कारण फैल जाती है और कई बार जंगलों में लगने वाली आग का कारण बिजली गिरना या फिर अत्यधिक सूखी लकड़ियां या फिर पेड़ पौधों के सूखे पत्ते भी होते हैं। वनाग्नि यानी कि जंगल की आग एक वैश्विक चिंता बन गई है, क्योंकि इससे कई देशों को वन में रहने वाले जीवों के साथ साथ संपत्ति का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा जंगल की आग के कारण हवा में मिलने वाली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से मनुष्यों में फेफड़े और त्वचा में संक्रमण भी होता है। जी हाँ, वहीं आजकल की बात हम करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी आग अब बड़े संकट का रूप लेती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में अभी पिछले दिनों आग लगी थी।

जी, और कसौली क्षेत्र में लगी आग सैन्य प्रतिष्ठानों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को राहत अभियान में उतरना पड़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल की आग गंगोत्री हाईवे तक पहुंच गई और धुएं से घिरे एक गेस्ट हाउस से 70 यात्रियों को सुरक्षित निकालना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर और रामबन जिलों में कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं और कई गांव आग की जद में आ गए हैं। धुएं से घने गुबार से पहाड़ों में विजिबिलिटी जो है वो घट गई है और कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तेज गर्मी, सूखे जंगल और तेज हवाओं के कारण आग लगातार फैल रही है। हिमाचल में वायुसेना ने रात में भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जारी रखा, जबकि जम्मू कश्मीर में दुर्गम पहाड़ी इलाकों और तेज हवाओं के कारण राहत अभियान प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में धुएं की वजह से कई इलाकों में दिन के समय भी धुंध जैसे हालात बन रहे हैं। बिल्कुल, कसौली में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों में बाम्बी बकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिससे पास के जल स्रोतों से पानी भरकर सीधे आग वाले इलाकों में गिराया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले के आदिबदरी क्षेत्र में आग खेतों और गांवों तक पहुंच गई, जबकि विकासनगर के कालसी क्षेत्र में एक स्कूल भी इसकी चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थानीय लोग भी वन विभाग के साथ मिलकर आग बुझाने में जुटे हैं। बिल्कुल, ये देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच इस साल हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव का तगड़ा असर है और इसी बीच पहाड़ी राज्य के जंगल भी धू धू कर जल रहे हैं। और जंगलों की आग को रोकने के लिए बताया गया है, सबसे पहले तो फायर लाइन बनाना, जंगलों के बीच सूखी घास और पत्तियां साफ करके फायर लाइन बनाई जाए ताकि आग आगे ना फैले। और इन सूखी पत्तियों को हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीड़ की सूखी पत्तियों और सुइयों यानी कि कश्ते को समय समय पर हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से आग जो है वो आगे फैलती है। स्थानीय लोगों की भागीदारी भी इसमें बहुत ज़रूरी है। ग्रामीणों और पंचायतों को जागरूक करके आग लगने पर तुरंत सूचना देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और मानवीय लापरवाही को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगलों के आसपास बीड़ी या फिर सिगरेट या फिर जलती वस्तुएं फेंकने पर सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण आग लगती है, कई बार मानवीय लापरवाही के कारण आग लगती है। तो इसलिए मनुष्य को सजग रहना चाहिए कि वनों में आग किसी भी कारण से ना लग पाए। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जरा सी भी आग लगे तो उसकी शुरुआती सूचना मिल सके और उसको बुझाया जा सके। आग की सूचना मिलते ही शुरुआती स्तर पर बुझाने के लिए टीम मौके पर जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। और स्कूलों और गांवों में लोगों को जंगलों के महत्व और आग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए, और अगर इससे होने वाले नुकसान के बारे में सबको पता होगा तो सब जागरूक रहेंगे और रोक सकेंगे, बचा सकेंगे जंगलों में आग लगने से। देखिए इससे कितना नुकसान होता है। हमने बताया वायु प्रदूषण तो फैलता ही है, और वायु प्रदूषण के फैलने से मनुष्यों में त्वचा संबंधी, फेफड़ों संबंधी कितने रोग हो जाते हैं। वहीं जंगलों में कितने ही जीव जंतु रहते हैं जो जंगलों में आग लगने से मर जाते हैं। कई प्रजातियां जो है पशुओं की, पक्षियों की विलुप्त हो जा रही हैं इसी वजह से। और जब जंगलों में आग लगती है, जंगल नहीं बचते हैं तो ये जानवर जो हैं वो शहरों की तरफ दौड़ते हैं और फिर हमें ही इनसे खतरा रहता है। तो ये हमें सहयोग करना है कि जंगलों में आग ना लग पाए। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बढ़ती जंगली आग की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। गर्मियों के दौरान तापमान बढ़ने और लंबे समय तक बारिश ना होने से जंगलों में सूखी घास और चीड़ की पत्तियां और सुइयां तेजी से आग पकड़ लेती हैं, और प्रदेश के चीड़ बहुल क्षेत्रों में खतरा और अधिक रहता है, क्योंकि चीड़ की सूखी पत्तियां बेहद ज्वलनशील होती हैं।
कई मामलों में मानवीय लापरवाही भी आग का बड़ा कारण बनती है। जंगलों के आसपास जलती बीड़ी सिगरेट फेंकना या फिर सूखी घास में आग लगाना नुकसान बढ़ा देता है और इस पर काबू पाने के लिए वन विभाग के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। समय रहते सूचना देने और शुरुआती स्तर पर आग बुझाने के प्रयास से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। जंगलों को बचाने के लिए जिम्मेदारी से सहयोग करना बेहद जरूरी है, तभी हम अपने जंगलों को आग से बचा सकते हैं। ये थी आज की लघु वार्ता, जंगलों में बढ़ती आग और उसकी रोकथाम।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी दोस्तों, सुबह के 10:15 हो चुके हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आज का ये कार्यक्रम महफिल कव्वाली लेकर। जी हाँ, कुछ फिल्में कव्वालियों से आपका मनोरंजन इस कार्यक्रम में हम करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की पहली कव्वाली सुनते हैं भरत जोशी, अनुपमा देशपांडे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है हमरा ही।

जी, ये थी कार्यक्रम की पहली कव्वाली। महफिल कव्वाली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और अब जो कव्वाली हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है तेरा जादू चल गया।

जी, हिना फिल्म की ये कव्वाली थी। लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद, फरीद साबरी और साथियों की आवाजों में महफिल कव्वाली कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और कार्यक्रम की अंतिम कव्वाली आइए सुनते हैं।

बिल्कुल जी, इसके बारे में भी हम आपको बता दें, इस कव्वाली में आवाजें आप सुनेंगे आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। और इस कव्वाली को हमने लिया है जमाने को दिखाना है फिल्म से।

जी, जमाने को दिखाना है इस फिल्म की ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। और इसी के साथ अब आज का महफिले कव्वाली कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लोक रंग कार्यक्रम।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी हमीरपुरा ते तुहां सुनी करदे हन लोक रंग कार्यक्रम। कने अंतराला दे पहले तुहां जे लोक गीत सुनिया सह था पुरुषोत्तम दास होरां दा गाया हुआ। कने हुण जे लोक गीत अहां तुहां जो सुनाना है सह जीवन कुमार होरां दी आवाज़ च, तां आवां सुनी लैंदे हन ए लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: ताबी श्रोतियों, इस गीता सौगी हुण अज दा लोक रंग कार्यक्रम इत्थों ही हुंदा है संपन्न। दिया इजाजत, राम राम।

अभी आप लोक रंग कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो गया। इस दौरान मतदान 80% रहा। प्रदेश

0: लगभग 86% रहा। पंचायत स्तर पर सोलन जिला के नालागढ़ के ढेला पंचायत में सबसे अधिक 96% मतदान मतदाताओं से ज्यादा रहा। यह मतदान प्रतिशत वर्ष 2021 के चुनाव के दूसरे चरण की तुलना में 4% अधिक रहा। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे कल देर रात घोषित किए गए। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
1: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कल 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का कल 30 मई को हिमाचल दौरे पर आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे बिलासपुर जिला के विजयपुर में पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा राजकीय प्राथमिक पाठशाला विजयपुर स्थित अपने बूथ पर परिवार सहित मतदान करेंगे। कल पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। यह चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिससे दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणात्मक पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। चंबा जिले में नशा एवं नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम तथा उनकी धरपकड़ हेतु कार्यतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने आवश्यक पग उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान के तहत एनडी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2026 में अब तक 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए उपायुक्त चंबा द्वारा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने, उचित स्थानों पर शिकायत पेटियां स्थापित करने तथा समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को बस अड्डों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर नशा मुक्ति और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा नशे की तस्करी रोकने हेतु विशेष रूट्स पर परिवहन निगम की बसों में कैमरे स्थापित करवाने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्यों के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

सोनू निगम को आप सुन रहे थे जान एल्बम से, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन इस समय हम लेकर आते हैं कार्यक्रम वनिता मंडल। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है वनिता मंडल।
1: वनिता मंडल, वनिता मंडल।
0: वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ भावना कतना और आज भी आपके लिए जानकारी और मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ। और आपको भी इंतज़ार होगा कि आज हम

समस्या हो या फिर बच्चों की कोई समस्या हो, महिलाएं जो है उसे बड़े अच्छे तरीके से सुलझा लेती हैं, है ना, अपने स्तर पर। और बहुत कम ऐसा होता है कि ये बातें जो है वो उनके बस से बाहर हों या फिर किसी और का सहारा उन्हें लेना पड़े, है ना। देखिए आज की महिलाएं बहुत ही जागरूक हैं, हर काम को बखूबी निभाती हैं। और पहले की महिलाओं की अगर हम बात करें ना, तो उन्होंने भी इतनी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब देखिए, हम महिलाओं को घर के काम निपटाने का सबसे पहला जो जिम्मेदारी होती है घर की, कि सुबह साफ सफाई का काम करना है, खाना बनाने का काम करना है। और इसमें जो है ना, आजकल बहुत से ऐसे गैजेट्स हैं जो हमारी मदद करते हैं। अब जैसे घर का काम करना है, साफ सफाई का काम करना है, उसमें वैक्यूम क्लीनर है, वो हमारी मदद करता है बहुत हद तक, है ना। तो हम आपको बताएं कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ना, इसका आविष्कार भी एक महिला ने ही किया था। जी हाँ, झाड़ू पोछा करने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, उसके जो ये काम है, इसे प्रभावित होकर आज देखिए वो कितनी ही महिलाओं की हेल्प कर रहा है। तो उसके बारे में हम आपको बताएं कि रोबोटिक्स में ग्रेनर ने ये इन्वेंट किया है। और इसका दिलचस्पी उनकी तब शुरू हुई जब उन्होंने 10 साल की उम्र में स्टार वार्स फिल्म देखी और उसके किरदार R2-D2 से बेहद प्रभावित हुई थी। और ये 58 साल की हेलन ग्रेनर थी जिन्होंने वैक्यूम क्लीनर को का इन्वेंट किया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रेजुएट और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हेलन ने मशहूर रोम्बा को क्रिएट किया और इसे 2002 में लॉन्च किया गया और ये पहला बेहद सफल कॉमर्शियल घरेलू रोबोट बन गया। और आज देखिए ये रोबोट जो है, ये वैक्यूम क्लीनर जो रोम्बा है, हमारे कमरे में बैठा रहता है और काम पर लग जाने के लिए हमारे कमांड का इंतज़ार करता है। और देखिए वो मतलब सामान्य तौर पे पूरे घर की सफाई 45 मिनट से भी कम समय में बिना किसी निगरानी के सिर्फ वॉइस कमांड पर झाड़ू पोछा कर सकता है। देखिए महिलाओं की ना हमेशा से अपेक्षा की जाती रही है कि वो ना सिर्फ परिवार के खाने और कपड़ों का काम संभालें बल्कि घर को साफ रखने समेत कई अन्य कामों में शारीरिक मेहनत भी करें। ऐसे कई काम थे जो रोज घंटों की मेहनत मांगते थे और घरेलू जीवन को नीरस बना देते थे, क्योंकि महिलाओं का सारा काम जो है वो इसी में चला जाता था, घर के कामों में ही, अपने लिए तो उसको टाइम ही नहीं मिल पाता था। इसीलिए देखिए कई आविष्कारों ने जन्म लिया और कई महिलाएं ऐसे आविष्कारों के लिए प्रेरित हुई जो उनका समय बचा सकें। सबसे ज्यादा देखिए कमर तोड़ने वाला काम है बर्तन धोना। शायद आपको भी ऐसा लगता हो कि बर्तन धोना ना भाई, धोने तो पड़ते हैं पर बड़ी मेहनत लगती है ना। हालांकि डिश वॉशिंग मशीनें मौजूद पहले भी थी, लेकिन 1883 की बात हम आपको बताएं, जोसेफिन कोक्रेन के पति की मौत हो गई और वो कर्ज में डूब गई। और पहले से मौजूद डिश वॉशिंग मशीनों में ब्रश और स्क्रबर का इस्तेमाल होता था जिनसे ठीक सफाई नहीं होती और क्रॉकरी को नुकसान भी पहुंचता था। तो ये मशीन भी ठीक उनके सर्वेंट जैसा ही परिणाम देती थी। तो तब उन्होंने कहा कि अगर कोई और डिश वॉशिंग मशीन नहीं बनाएगा तो मैं खुद ही बनाऊंगी। और उन्होंने ऐसी मशीन डिजाइन की जिसमें धातु की रैक में रखे बर्तनों को धोने के लिए मोटर से चलने वाले पहिए और हॉट वाटर प्रेशर का उपयोग होता था। दिसंबर 1886 में उन्हें अपने आविष्कार के लिए पेटेंट मिला और यही खोज आधुनिक डिशवॉशर्स के मानक डिजाइन का आधार बनी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग हर घर की रसोई का सबसे आम साथी रेफ्रिजरेटर भी महिलाओं की ही देन है। जी हाँ, और गर्मियों में तो गर्मियां हो चाहे सर्दी, हर मौसम में ही रेफ्रिजरेटर का उपयोग तो होता ही है। और हमारे लिए कितनी सहूलियत हो जाती है, अगर कोई सब्जी बच जाए, आटा गूंथते हैं हम, फ्रिज में रख दें तो हमें डर नहीं रहता है कि वो ख़राब होगा। अब दूध देखिए, कोई भी सामान हो, रेफ्रिजरेटर ना हो तो हमें
अपनी रसोई अधूरी सी लगती है ना।

0: तो इसका आविष्कार भी एक महिला ने ही किया है। पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोग आइस बॉक्स इस्तेमाल करते थे जिसमें लगातार पिघला हुआ पानी निकालने की समस्या थी। महिलाओं को खाना खराब होने से बचाने के लिए पकाने और इसे स्टोर करने की योजना बनानी पड़ती थी। दरअसल आप और हम जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर आज इस्तेमाल करते हैं, उसका पेटेंट जो है वो 1914 में एक महिला स्टेनोग्राफर फ्लोरेंस परपार्ट ने किया था, और ऐसा करने वाली वे पहली महिला नहीं थी। फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने 1913 में इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया, जिसमें इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर आइस बॉक्स के ऊपर रखा जाता था, लेकिन फ्लोरेंस ने इसे पूरी तरह मैकेनाइज्ड कर फ्रंट ओपनिंग कैबिनेट लगाया, जिससे उनके लिए खाना रखना और निकालना काफ़ी आसान हो गया। दिलचस्प ये है कि जब महिलाओं को पेटेंट नहीं दिए जाते थे तो पेंसिल्वेनिया के थॉमस मास्टर्स ने कॉर्न प्रोसेसिंग मशीन का पेटेंट कराया, जबकि ये आविष्कार उनकी पत्नी सिबिला मास्टर्स ने किया था। देखा आपने कितने आविष्कार, और वो भी वो वाले आविष्कार जो महिलाओं को सहायता देते हैं किचन में, घर में महिलाओं ने ही किए हुए हैं। और देखिए, सिबिला ऐसी मशीन बनाने के लिए प्रेरित हुई जिनका कि अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जिन्हें मैकेनाइज करने में महिलाओं ने योगदान दिया, चाहे वो मार्गरेट ई नाइट की फ्लैट बॉटम पेपर बैग मशीन हो, सारा बून की बेहतर आयरन बोर्ड हो, या फिर मैरियन ओ ब्रायन डोनोवान का वाटर प्रूफ डायपर कवर हो। ये सब महिलाओं ने ही निजात किया है, महिलाओं ने ही खोजा है, महिलाओं ने ही इसका पेंटेंट लिया है। तो भाई, हम अपनी सभी सखियों को यही कहना चाहेंगे, मतलब ये सब बताने का जो निचोड़ है वो ये है कि आज के ज़माने में भी हम, अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डरे नहीं, उसका डट कर हमने सामना करना है। क्योंकि देखिए, पहले ज़माने में ये समस्याएं महिलाओं के सामने आई तो उन्होंने कितने आविष्कार किए जो आज भी हमारी मदद कर रहे हैं, और इनकी वजह से ही हमारा कितना टाइम बच रहा है, हमारी कितनी हेल्प हो रही है ना। तो आज भी हम ऐसा कर सकते हैं। महिलाएं कभी किसी को, अपने आप को किसी से कम ना समझें, समस्या का सामने से मुकाबला करें। कौन जाने अगले आविष्कारक आप ही हों, तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, नए नए आविष्कार कीजिए, और अपनी भी और औरों की भी हेल्प कीजिए। और अब हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, एक अंतराल, म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और वनिता मंडल कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त भावना कत्ना के साथ। जी, अभी आप और हम बात कर रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो समस्या से बचे नहीं बल्कि उनका सामना करें, जैसे पिछले कई वर्षों से महिलाएं करती आई हैं। और देखिए, अब बात करते हैं, देखिए समस्याएं हैं उनका सामना तो हमने करना ही है, लेकिन एक और बात है, जैसे पहले की महिलाएं होती थी ना, कोई समस्या, जैसे अभी हमने आपको बताया कोई भी समस्या आई तो उन्होंने उसका हल ढूंढा, आविष्कार किया जो आज भी हमारी मदद कर रहा है। ऐसे ही देखिए पिछले ज़माने की बात करें या थोड़े टाइम पहले की ही बात करें तो हम देखते थे कि हमारी मम्मी जो हैं, दादी नानी, उनके कितने शौक़ होते थे। जैसे अगर वो खाली होती थी तो सिलाई बुनाई कढ़ाई बागवानी बहुत कुछ करती थी, और उनके इस शौक़ के ज़रिए ही हम उनकी बनाई हुई स्वेटर्स पहनते थे और उनकी बनाई हुई चादरें, कढ़ाई की हुई चीज़ें कितनी सुंदर लगती थी। और ये आज की अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो ये कहती हैं कि भाई ये तो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं। आजकल अगर आप किसी लड़की को देखें कि वो सिलाई कर रही है या कढ़ाई कर रही है या फिर बुनाई कर रही है तो सब उसको देखते बोलते हैं कि अरे तुम ये सब क्या काम कर रही हो, तो पुराने ज़माने के काम हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। देखिए, हम कोई ना कोई एक्टिविटी पहले करते थे तो वो एक तरह से हमें आगे बढ़ने में मदद करता था और हमारी उम्र को भी बढ़ाता था। जी हाँ, जिसे हम सभी पुराना फैशन कहकर छोड़ चुके थे, विज्ञान अब उसे लंबी उम्र का सबसे कारगर नुस्खा बता रहा है। जी हाँ।

ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने एक लंबे शोध में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जो महिलाएं सिलाई बुनाई क्रोशिया और बागवानी में व्यस्त रहती हैं ना, वो अन्य महिलाओं की तुलना में औसतन 8 साल ज़्यादा जीवित रहती हैं। और ये लंबी और सेहतमंद जिंदगी का सीक्रेट कोड साबित हो रहा है जी। और देखिए ना, शोधकर्ताओं के अनुसार जब कोई महिला ऊन के फंदों को बुनती है या फिर कपड़े सिलती है तो उसके हाथों की लयबद्ध और दोहराव वाली हरकतें जो है ना, वो हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं। और ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई ध्यान मेडिटेशन लगा रहा हो। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का स्तर गिरता है और खुशी देने वाले हार्मोन डोपामाइन बढ़ता है। सरल शब्दों में कहें तो जब सुई धागे में पिरोई जाती है तो दिमाग बाहरी शोर से कटकर पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और ये क्रिएटिविटी जो है वो दिमाग को बूढ़ा होने से बचाती है, रोकती है। और मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सिलाई जैसे कामों में रंगों का चुनाव, गिनती रखना और डिज़ाइन तैयार करना दिमागी कसरत का काम करता है। इससे याददाश्त बेहतर होती है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली भूलने की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। जब कोई महिला खुद के हाथों से कोई चीज़ तैयार करती है तो उससे मिलने वाली सफलता की अनुभूति उनके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाती है। सिलाई बुनाई के दौरान होने वाली दोहराव वाली हरकतें जो है ना, वो दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाती हैं, जो गहरे आराम की स्थिति है। बागवानी में एक बीज को पौधा बनते देखना जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया विकसित करता है और ये अकेलेपन का सबसे अच्छा इलाज है। तो भाई, अगर आप भी खाली हैं, कुछ समय आपके पास बचता है, तो आप भी इन कामों को कीजिए। पुराना फैशन कहकर इनको नकारिए मत, क्योंकि इनसे जो है वो आपके दिमाग की कसरत होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी उम्र लंबी होती है और भी बहुत कुछ। देखिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई और बागवानी का शौक जीवन में एक अनुशासन लाते हैं। घरेलू काम योग जितना प्रभावी है और इससे मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक शौक एक तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अन्य अध्ययन में भी ये पाया गया कि बुनाई करने से हृदय गति जो है ना, प्रति मिनट 11 धड़कन तक कम हो सकती है, जो शरीर को रिलैक्स मोड में डाल देती है। और विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल स्क्रीन की दुनिया में ये एनालॉग शौक महिलाओं को भावनात्मक रूप से ज़मीन से जोड़े रखता है। तो भाई, अब जो हम देखते हैं आजकल के समय में, जो हम देख रहे हैं कि जो भी लड़कियां हैं या जो भी बच्चे हैं, वो खाली समय में क्या करते हैं? जी हाँ, अपना मोबाइल उठाते हैं और बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। तो भाई, इससे बचिए, ये सिर्फ हमें नुकसान देगा। हाँ, अगर आप कुछ जानकारी की वस्तु ढूंढ रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा समय ही नष्ट करता है। तो इससे बढ़िया आप ये सब काम कीजिए जो हमारी दादी नानियाँ करती थी, हमारी मम्मियाँ करती थी, और अपने आप को बेहतर बनाइए। क्योंकि बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी जो है वो इंसान को बेहतर बनाती है, और कला के करीब रहने वालों की उम्र जो है ना, वो थम जाती है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये वैज्ञानिक कहते हैं। और आपको बताएं कि कलात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी हमारी जैविक उम्र को धीमा करने में मददगार है और ऐसे अनुभव मानसिक शांति, सामाजिक जुड़ाव और दिमागी सक्रियता को बढ़ाकर जीवन को अधिक स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान बनाते हैं। जी देखिए, आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम अपनी उम्र को कैलेंडर के दिनों से नापते हैं, है ना, जो कि हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन शरीर के भीतर कोशिकाओं की एक अलग उम्र होती है जिसे जैविक उम्र कहा जाता है, और इसे मापने के सबसे सटीक वैज्ञानिक तरीकों को एपिजेनेटिक क्लॉक कहते हैं। और ये क्लॉक डीएनए पर होने वाले रासायनिक बदलावों, जिन्हें डीएनए मिथाइलेशन कहा जाता है, इसका अध्ययन करके बताती है कि हमारा शरीर वास्तव में कितना

0: ना बूढ़ा हो चुका है। और अध्ययन में ये भी देखा गया कि जो लोग हर सप्ताह संगीत, डांस, पेंटिंग या फिर संग्रहालय जैसी गतिविधियों में शामिल होते थे, उनकी जैविक उम्र औसतन 1 साल तक कम पाई गई। जी हाँ, अध्ययन के हैरान करने वाले निष्कर्षों में से एक ये था कि जो लोग नियमित रूप से थिएटर जाते हैं, पेंटिंग करते हैं, संगीत सीखते हैं, संग्रहालयों का दौरा करते हैं, उनकी एपिजेनेटिक उम्र उन लोगों की तुलना में काफ़ी कम होती है जो कला से दूर रहते हैं। और साथ ही हम जब किसी कलाकृति को देखते हैं या फिर खुद कुछ रचनात्मक करते हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्त्राव होता है और ये प्रक्रिया कॉर्टिसोल जो कि तनाव हार्मोन है उसके स्तर को काफ़ी नीचे ले जाती है। तो डेटा से पता चला कि कला के करीब रहने वाले लोगों में संज्ञानात्मक गिरावट की गति बेहद धीमी थी। तो भाई आज से ही आप भी अपनी क्रिएटिविटी शुरू कीजिए, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपको पता ही होगा कि इसके कितने फायदे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हैं, खाली टाइम में टीवी लगा लेते हैं या फिर मोबाइल चला लेते हैं, तो भाई आज से ही अपनी क्रिएटिविटी शुरू कीजिए, अपने गुणों को पहचानिए, अपने शौक को पहचानिए, आप में क्या गुण है, क्या आप कर सकते हैं उसको पहचानिए। ये न सिर्फ आप में आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि ये आपकी उम्र को भी लंबा करेगा, एक स्वस्थ उम्र जो कि हर कोई जीना चाहता है ना। तो हमारी अपनी सभी सखियों को से ये गुजारिश रहेगी कि अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ मत गंवाइए, कोई ना कोई आविष्कार आप भी करिए, कोई ना कोई क्रिएटिविटी करिए और अपनी दादी नानी के जो ये शौक है, जो वो काम करती थी, इनको आगे भी जारी रखिए। और हम कार्यक्रम में जारी रखते हैं मनोरंजन का सिलसिला एक गीत इस अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जी सखियों, तो अब देखिए आज के इस कार्यक्रम में जो जानकारी हमने आपको दी उससे आप अवश्य लाभ उठाएंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो अब कार्यक्रम में समय और नहीं बचता है कि हम आपसे और बातें करें, तो लेते हैं आपसे इजाज़त और कहते हैं नमस्कार।
1: वनिता मंडल, वनिता मंडल।
0: वनिता मंडल, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

सैनिक भाइयों जय हिंद। लीजिए आज फिर हम हाजिर हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत लेकर। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमको दीवाना कर गए फिल्म के इस गीत के साथ।

सुनिधि चौहान, शान और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था हमको दीवाना कर गए और उम्मीद है ये गीत भी आपको दीवाना कर ही गया होगा। जी हाँ, सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय आपको बताएं दोपहर के 12:38:30 हुए हैं। आइए अगला गीत सुनते हैं। इश्क विश्क फिल्म से हमने इस गीत को लिया है, आवाज़ें अलका याग्निक और साथियों की।

हीरो फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, राहुल पांडे, शलमली और साथियों की आवाजें थी। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और सैनिक भाइयों, अब जो गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, हम तुम फिल्म से हमने लिया है आवाजें। इसमें अलका याग्निक, शान और साथियों की आप सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं हम तुम फिल्म का ये गीत।

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले, मैं तो पहले भवरे जैसे अरे पास पास मंडरा है, बट फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्न।
0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम।
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening to you।
1: दिन में नजरें इनकी इधर उधर।
0: I'm not listening to you।
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with her।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it।

जी सैनिक भाइयों, ये है कार्यक्रम का अंतिम गीत। जोश फिल्म से हमने इसे लिया है, आवाज अभिजीत भट्टाचार्य की।

0: जोश फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यही होता है संपन्न। इजाजत दीजिए, जय हिंद। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: विविध भारती कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है।

तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की, और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन

शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए। तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से हैं, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आँखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफ़र का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़र का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम सफ़र में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें ज़िंदगी में, हर रोज़, हर सुबह।

सबसे पहली चीज़। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीज़ों का और गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है, ऐसा कहूँगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है, और बहुत सारी शब्द जो इनको नज़र आ रहे हैं, जुल्फ निगाह काजल कजरा महक बिंदिया पायल चांदनी वादा इशारा ख्याल धड़कन दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाज़ार की बात की गई थी, है ना? मीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, इस तरह के बाज़ार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाज़ार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छाँव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए आप इस प्रोग्राम में, और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाज़ारों की, तो दिल्ली का लाल किला, मीना बाज़ार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला, मीना बाज़ार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाज़ार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाज़ार नाम की दुकान दिख ही जाती है। बिल्कुल बाज़ारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाज़ारों के नाम अगर आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। और वहाँ पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मज़ा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीज़ें खरीदने का भी मज़ा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रेम पर्वत से ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतज़ार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाज़ारों के नाम और वहाँ पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है, और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घुमा हुआ है मैंने जौहरी बाज़ार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है, और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है, और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाज़ार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाज़ार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाज़ार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाज़ार जो कि रात भर खुला रहता है, और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाज़ार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे, फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाज़ारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को ख़रीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाज़ार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाज़ार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भिलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है, सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं, बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और बीजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है, जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट, और ख़रीदारी का मज़ा तो बाज़ार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाज़ार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफ़ी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में बड़ा बाज़ार है, जहाँ हस्तशिल्प, अच्छी डिज़ाइन की मोजड़ियाँ, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाज़ार, भोटिया मार्केट से गर्म स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाज़ार है, जिसे पटवा बाज़ार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूँ तो। और यहाँ पर शादी के काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है, और श्रृंगार का भी काफ़ी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव, जो कि पूरी ज़िले में है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियाँ, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाज़ारों की बात की जाए तो भिंडी बाज़ार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं, और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाज़ार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाज़ार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाज़ारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती हैं यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: compared to 7.1% a year ago, supported by strong domestic consumption, sustained investment, proactive policy initiatives, and sound macroeconomic fundamentals. The report further stated that the outlook for the agriculture sector in 26-27 remains contingent upon the progress and distribution of the southwest monsoon. It also said inflation in 26-27 is likely to remain aligned with the target due to adequate food grain stocks, sufficient reservoir levels, and stable agricultural prospects despite possible El Nino conditions and above normal summer temperatures. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi today asserted that humility, forgiveness and noble conduct are the true ornaments of personality. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said, along with these qualities, countrymen are steadfastly engaged today in the fulfillment of the resolve for a developed India. The government has refuted a deep fake video of Prime Minister Narendra Modi with fabricated claims related to Italian Prime Minister Giorgia Meloni and remarks about Iran-US mediation. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has claimed that the video is digitally altered and AI-generated. PIB noted that the video is being circulated by Pakistani propaganda accounts and reiterated that Mr. Modi has not made any such statements. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot today accepted the resignation of the outgoing Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made. He has also been asked not to take any executive decisions during this period. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed the need to adopt bhakti and meditation to attain inner and global peace. Addressing the 45th anniversary celebrations of the Art of Living Foundation International Centre in Bengaluru today, he said bhakti signifies dedication towards oneself, family, society, the nation and humanity as a whole. He said bhakti inspires people to live in harmony with others and with themselves. Quoting the teachings of Sri Sri Ravi Shankar, he said, "The art of living lies in embracing change and enjoying every moment of life." He added that Dhyan, Gyan and Gan enrich both life and personality. Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has congratulated the government of Odisha, Intel and 3DGS on signing a memorandum of understanding to bring substrate manufacturing technology to India. Mr. Vaishnav said this will further advance the semiconductor ecosystem in India. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jayashankar lauded the brave women and men serving under UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister Chaudhary Charan Singh on his death anniversary today. In a social media post, the Vice President said, "The former Prime Minister was a visionary leader and a tireless advocate for farmers who dedicated his life to the welfare of the agrarian community and the upliftment of rural India." The Lok Sabha Speaker underlined that the entire life of the former Prime Minister was dedicated to the upliftment of the country's farmers, labourers and villages. Mr. Shah noted that Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh played a pivotal role in strengthening democratic values from the freedom struggle to the emergency period. At least six workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur district of Uttar Pradesh. The bridge, which stretches from Molkandar to Kandor village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. NDRF and SDRF started rescue work and operations are still underway. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mahapatra, said the average rainfall in the country during the month of June is most likely to be below normal. He said during the period only some parts of the country, including northwest, northeast and south peninsula, are expected to witness normal or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mahapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
2: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and adjacent areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
1: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 metres, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 metre at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
5: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
3: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
5: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
3: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
6: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
7: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
3: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
3: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कल 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इस बीच कल होने वाले अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील भी की।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा

0: कहा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले हर घर के साथ देश ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और आत्मनिर्भर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चंबा जिले में नशे व नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम और उनकी धरपकड़ के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में, विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में, चिट्टा व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान के तहत एनडी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2026 में अब तक 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने, उचित स्थानों पर शिकायत पेटियां स्थापित करने तथा समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को बस अड्डों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर नशा मुक्ति और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। ऊना में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संबंधित जिला प्रशासन ने अत्यधिक गर्मी के चलते एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा, कांगड़ा और सोलन जिले में कहीं कहीं वर्षा व अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर सहित जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है मिशन 32% वन विस्तार की ओर बढ़ते कदम। वाचिका है प्रभा शर्मा।
3: प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए देश भर में जाना जाता है। बदलते जलवायु परिदृश्य, बढ़ते तापमान और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच पर्यावरण संरक्षण आज सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में एक दूरदर्शी पहल के रूप में मिशन 32% की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को 32% तक पहुंचाना है। ये पहल केवल वन क्षेत्र बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, जैव विविधता संवर्धन और सतत विकास की व्यापक सोच को भी दर्शाती है। पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए वन केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि जल स्रोतों, मिट्टी संरक्षण और स्थानीय आजीविका का आधार भी है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना चाहिए। इसी लक्ष्य की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत सरकार प्रदेश भर की बंजर और अनुपयोगी पहाड़ियों को फिर से हरित बनाने का अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत लगभग 257 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पर्यावरण अनुकूल प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने वन विस्तार और संरक्षण को लेकर कई अभिनव पहलें शुरू की हैं। इनमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3376 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की जा चुकी है, जबकि शेष क्षेत्र की पहचान की प्रक्रिया जारी है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधों का चयन किया जा रहा है। योजना के तहत लगाए जाने वाले पौधों में लगभग 60% फलदार प्रजातियों को

0: ब्लैकमेल किया गया है। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर भविष्य में स्थानीय समुदायों के लिए आय और स्वरोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। इस योजना के पहले चरण में लगभग 600 हेक्टेयर बंजर भूमि पर सफलतापूर्वक पौधरोपण किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि सरकार पर्यावरणीय लक्ष्यों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू कर रही है। इसी दिशा में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना भी वन क्षेत्र के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरी है। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर वन भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है और पौधों की देखभाल तथा संरक्षण के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। पौधों की जीवितता दर सुनिश्चित करने के लिए लोगों और संस्थाओं को प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस योजना की एक बड़ी विशेषता सामुदायिक भागीदारी है। स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, युवा मंडल और स्थानीय संस्थाएं सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी निभा रही हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश सरकार ने हरित विकास को जन भागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से ग्रीन अडॉप्शन योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत निजी कंपनियां, उद्योग समूह और गैर सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर वहां पौधरोपण और संरक्षण का कार्य करेंगे। ये पहल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है।
1: आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया,
2: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
1: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
2: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
1: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
2: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
1: अच्छा।
2: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
1: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
2: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
1: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
2: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
1: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
2: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
1: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं।
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से। हाँ
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी, कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय,
1: हाँ मैं भी, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते हैं, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा
1: हाँ
0: रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ। जी
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो बोरमाई।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन हैं?
1: एक बेटा, दुई बेटी,
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी।
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं। फिल्म
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं BSc फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज़्यादातर तो YouTube पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम हैं उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं YouTube पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ,
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
0: अच्छा।
1: उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउस वाइफ मैम
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी। हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी, वो
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े, तो
0: जी।
1: बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका
1: जी
0: पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है, थोड़ी इधर लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से। जी
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं। सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड
0: अच्छा
1: में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को। जी,
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं। और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे। हेलो
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे।
0: ये
1: अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके। हाँ
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम,
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम,
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए
1: जी
0: कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते थे। मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं,
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के

0: सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
1: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
0: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
1: जी
0: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
1: जी
0: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
1: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है।
0: जी,
1: बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: जी।
1: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
0: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
1: जी
0: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। वहां से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
1: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
0: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहुशो हवाज दीवाना,
1: रफी
0: रफी
1: साहब का गाया
0: साहब।
1: हुआ।
0: जी,
1: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-2462, 022-28-670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-2462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28-670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का। वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

श्योपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था। और पछतावा उम्र भर का, कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित, माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
3: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या का कार्यक्रम। युव मंच कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। सफर सुहाने, गाने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। भक्ति संगीत आपको सुनवाया जाएगा शाम 7:05 पर। रौनका गराइंदियां ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 7:25 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत आपको सुनवाया जाएगा रात्रि 10:00। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:08 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गिरधारी लाल वर्मा और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

भजन संध्या का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं सुरेश चौहान और साथियों की आवाजों में।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 MHz पर शाम के 5:25 हुए हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं भजन संध्या कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जोगिंदर बल्ला और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओ, इसी के साथ आज का भजन संध्या कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवमंच।

युवा दोस्तों, जय हिंद। कार्यक्रम यो मंच सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम यो मंच में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। यो मंच प्रोग्राम में हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, जानकारियां देते हैं और आपके मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं बेहतरीन नगमे। तो दोस्तों, बिल्कुल आईपीएल की धूम आजकल चली हुई है और आप युवा हैं और युवाओं के मन में जो क्रिकेट के प्रति जुनून है, प्रेम है, उमंग है, उत्साह है, वो बिल्कुल छुपे नहीं छुपता। और बिल्कुल दोस्तों, देखिए, आईपीएल का रोमांच हो या फिर वनडे या फिर T20 हो, इन सब में जो क्रिकेट है, क्रिकेट कहीं ना कहीं भारत में बहुत ही ज़्यादा, आप कह लीजिए फेमस है, आप कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा लोग लाइक करते हैं क्रिकेट को। और ये जो क्रिकेट का खेल है, ये हर बच्चे का, हर युवा का पसंदीदा खेल बन गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्रिकेट में करियर कैसे बनाएं। युवा दोस्तों, क्रिकेट जो है वो हमारे देश का एक प्रसिद्ध खेल है और इस खेल को छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक अत्यधिक पसंद किया जाता है। और वर्तमान समय में क्रिकेट में रोमांच के साथ साथ करियर के बेहतरीन अवसर की संभावना है, जिसके कारण अधिकांश युवा वर्ग एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है। परंतु एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए लगन के साथ कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पे, सही समय पे हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बताएंगे किस तरह से आप क्रिकेटर बन सकते हैं, किस तरह से आप क्रिकेट में अपना करियर बना सकते हैं। तो युवा दोस्तों, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए कठिन परिश्रम के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जो इस प्रकार से है कि देखिए, अगर आप एक अच्छा क्रिकेटर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जो आयु है वो लगभग 8 वर्ष हो, क्योंकि 8 वर्ष से जो नीचे है वो बच्चे इस खेल में नहीं आ सकते हैं। और यदि आपको या आपके बच्चे को क्रिकेटर बनना है तो आप उनको इस आयु में क्रिकेट अकादमी भेज सकते हैं। और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी अकेडमीज़ हैं जो 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश देती हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी एकेडमी भी हैं जो 8 वर्ष से लेकर 17-18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देती हैं। तो बिल्कुल क्रिकेटर बनने का जो सफर है वो शुरू होता है आपका 8 वर्ष की आयु से। और आप जो हैं, देखिए, 16-17-18 के हो जाते हैं तो बिल्कुल आपके अंदर वो हुनर आ जाता है, वो परिपक्वता आ जाती है कि आप जो हैं वो भारत के लिए खेल सकते हैं, अपने राज्य के लिए खेल सकते हैं, रणजी मैच खेल सकते हैं और IPL में भी अपनी धूम मचा सकते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम जो हैं वो एक अच्छी एकेडमी का चयन कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, किसी भी एकेडमी में प्रवेश प्राप्त करने से पहले उस एकेडमी से संबंधित आपको कोच, उसके रिजल्ट्स और भी बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। और आप अगर अपने बच्चे को ऐसी एकेडमी में भेजते हैं तो पहले आप जो हैं वो एकेडमी में जो क्रिकेट के कोच हैं, क्रिकेट के जो गुण सीखना आरंभ कर रहेगा आपका बच्चा, वो चीज़ें थोड़ी सी परख लीजिएगा, थोड़ी सी जांच लीजिएगा, किसी अच्छे एक्सपर्ट को ले जाकर आप जो हैं थोड़ी जांच परख कीजिए कि किस तरह की एकेडमी है, क्या इसका रिकॉर्ड है, आज तक कितने बच्चों की जो सिलेक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स करते ये हैं कि देखा देखी में बच्चों को इधर उधर भेज देते हैं और बाद में उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो आप अपने बच्चों से मेहनत करवाइए, लगन करवाइए, लेकिन सही दिशा में। अगर आपकी दिशा सही होगी तभी आपको जो है वो उस चीज़ का नतीजा सही मिलेगा। अगर आप यूं ही इधर उधर भटकते रहेंगे और आपको पता ही नहीं है और देखा देखी में आप सिर्फ किसी और के बच्चों को देख रहे हैं कि उस फला अकेडमी में वो जा रहे हैं, उस फला अकेडमी में वो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खुद जांच परख करिए। अगर आपको पता नहीं चलता है तो किसी अच्छे व्यक्ति को जो क्रिकेट की समझ रखता हो उसे अकेडमी में लेके जाइएगा।
और उनसे पूछिए कि आपकी एकेडमी से कितनी सिलेक्शंस हुई हैं, कहाँ कहाँ पे सिलेक्शंस हुई हैं, कहाँ कहाँ पे आपके बच्चों ने प्रवेश लिया है, और उस चीज़ को पूरे तर्क के साथ, पूरी जान पहचान के साथ उस चीज़ को जानने की कोशिश करिएगा। यूं ही किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है आपका अकेडमी का चयन। आगे भी आपसे हम इस विषय पर चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, फिलहाल हम रुक रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युव मंच। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं क्रिकेट में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो हमने आपसे बातचीत कर ली, अगर देखिए आपके बच्चे, आप जो हैं वो क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो लगभग 8 वर्ष होनी चाहिए और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं वो भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है दोस्तों वो है अकेडमी का चयन। जैसा कि हमने आपको बता दिया, आपको अच्छी अकेडमी की ज़रूरत होनी चाहिए और अच्छे कोच की जो है वो जांच पहचान आपकी होनी चाहिए। वहाँ पे आप उनको जांचें कि किस तरह के कोच हैं, उनका अकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो जब करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है मेहनत, लगन। और देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है निरंतर अभ्यास की आवश्यकता, यानी आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारण बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए और उस गोल पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और उसी प्रकार एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। यदि आप बैट्समैन बनना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप शॉट का अभ्यास करना होगा, और जब तक आपको एक शॉट आपका जो परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अभ्यास करना होगा। और इसके बाद जो है वो आपको प्रतिदिन फिटनेस पर भी वर्कआउट करना होगा, 2 घंटे के लिए समय देना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप फिट ही नहीं होंगे तो आप कैसे क्रिकेट खेल पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी फिटनेस होनी चाहिए क्रिकेट में। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। और युवा दोस्तों, अगर आप बॉलर बनना चाहते हैं, बॉलिंग करना चाहते हैं, तो लगभग 3 घंटे का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। लगातार आपको इतनी कोशिश होनी चाहिए कि आप 3 घंटे तक जो हैं वो नॉनस्टॉप बॉलिंग कर सकें। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप जो हैं वो लगभग 3 घंटे तक जो हैं वो बिना रुके आप दौड़ सकें, आप बॉलिंग करवा सकें। ये और ये सब कुछ चीज़ें आती हैं अभ्यास से, प्रैक्टिस से। तो अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप किसी अच्छी एकेडमी में चले जाते हैं युवा दोस्तों, तो उसके बाद जो है वो आपके पास बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनके माध्यम से आप जो हैं वो अंडर 15 खेल सकते हैं, अंडर 19 खेल सकते हैं, अंडर 17 खेल सकते हैं। और ये सब कुछ तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और क्रिकेट में करियर के विकल्प जैसे कि हमने आपको बता दिया, एक बैट्समैन के रूप में हो सकता है, फास्ट बॉलर के रूप में हो सकता है, स्पिनर के रूप में हो सकता है। अगर आप बैट्समैन बनना चाहते हैं तो आपको जो है वो 2 विकल्प होते हैं, हार्ड हिटर और डिफेंसिव उपलब्ध रहता है। तो जो हार्ड हिटर बल्लेबाज होता है वो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में उनकी काफ़ी मांग होती है, और इनमें प्रतिस्पर्धा जो होती है वो अधिक रहती है, यानी जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, और उनका जो करियर है वो शॉर्ट भी होता है। डिफेंसिव बैट्समैन की टेस्ट मैच में काफ़ी मांग रहती है और उनका करियर लंबा चलता है, क्योंकि देखिए जो जितना डिफेंसिव होगा क्रिकेटर उसका जो करियर है वो लंबा चलेगा, क्योंकि टेस्ट मैच आपको पता ही है उस तरह से चलते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका फास्ट बॉलर। तो क्रिकेट में फास्ट बॉलर की भी काफी मांग है, फास्ट बॉलर का जो करियर है वो अधिक समय तक नहीं होता। बड़े बड़े फास्ट बॉलर 7-8 साल में आपने देखा होगा गायब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चोटें आती हैं, बहुत सारी इंजरीज आती हैं। तो थोड़ा सा ये भी आपको जो है वो

ख्याल रखना होता है जब आप फास्ट बॉलर बनते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अपने हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे बहुत ही काम करना होता है। स्पिन बॉलर की बात करें हुआ दोस्तों, तो क्रिकेट में स्पिन बॉलर्स की मांग भी अत्यधिक है। और यदि आप राइट हैंडेड हैं तो आपको ऑफ स्पिनर बनना चाहिए, और लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेग स्पिनर के साथ साथ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर बनने के लिए आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छे स्पिनर को आईपीएल टेस्ट और वनडे मैच में सिलेक्शन के अवसर होते हैं, तो स्पिनर की भी काफ़ी अच्छी मांग है। और उसके बाद आपसे और भी हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर वक्त हो चला है म्यूजिकल ब्रेक का। आप सुनते रहिए प्रोग्राम यू मंच।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यो मंच। कार्यक्रम यो मंच में आज हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के क्षेत्र में आप करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अच्छे एक क्रिकेटर बन सकते हैं, और इस पर हमने आपसे बहुत सारी बातें कर भी ली हैं। दोस्तों, आपको बता दिया है कि एक बैट्समैन के रूप में आप जा सकते हैं, फास्ट बॉलर के रूप में आप जा सकते हैं, स्पिनर के रूप में आगे आप बढ़ सकते हैं, और अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपर और बल्लेबाज के रूप में भी आप जो हैं वो अपने करियर का आरंभ कर सकते हैं। विकेट कीपर और बल्लेबाज आप बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो है दोस्तों वो आपकी एकाग्रता यानी आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, ध्यान है, वो बिल्कुल ऐसे है पलक झपकते ही एकदम से बॉल पकड़ लेना, तो आप ज़रूर बनिएगा विकेट कीपर, एक अच्छे बल्लेबाज आप बन सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में जिन्होंने अपना करियर जो है वो शुरू किया विकेट कीपर के रूप में, बल्लेबाज के रूप में, और वो जो हैं वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्रिकेट का क्षेत्र है, इसमें आप आ सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के हमारे युवा इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल एक आप देख सकते हैं, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, और हाल ही में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे IPL मैच आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। और बिल्कुल देखिए, आप तो आपके हिमाचल प्रदेश में भी क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे उभरते हुए सितारे निकले हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो क्रिकेट में अपना करियर बना रहे हैं। तो आप भी मेहनत करिएगा, आप भी कोशिश करिएगा, और अगर आप मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप भी जो हैं वो अच्छा करेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप भी हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें और क्रिकेट में जो हैं वो अपना करियर बनाएं। और इसमें अगर आपका करियर बन जाता है तो बिल्कुल आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सेट हो जाती है। आपको सैलरी की चिंता नहीं करनी है, आपको जो है वो वेतन की चिंता नहीं करनी है, बहुत आप जो है इसमें इनकम कमा सकते हैं। साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिस्पेक्ट, एक सम्मानजनक जीवन, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, और जब आप अपने देश के लिए खेलते हो तो आपके ऊपर लोगों को गर्व होता है और आपको भी गर्व होता है कि आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे, और अगर आप सोचेंगे तो ज़रूर अच्छे क्रिकेटर भी बनेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का समय यहीं पर हो रहा है पूरा, दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अनूप को। नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और स्वगणना की सुविधा से लैस होगी। इसके लिए हजारों प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनगणना पर 86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दीपशिखा शर्मा ने बताया कि पहला चरण मकान सूचीकरण व आवास गणना का होगा, जो 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, जबकि इस बार नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी।
1: हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है, मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुँच कर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं 16 जून से 15 जुलाई के भीतर। तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे। उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी के मैच करने पर जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। मैं हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वगणना करके इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें।
0: प्रदेश में कल 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। उधर सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि कल अंतिम चरण में जिले की 89 पंचायतों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।
2: इसमें हमारी टोटल 89 पंचायतें रहेंगी और 515 वार्ड्स रहेंगे जहां कल मतदान किया जाएगा। अब तक का जो मतदान हमारे 2 चरणों में रहा है वो काफी पीसफुल रहा है। लोग भारी संख्या में आए हैं मतदान देने के लिए। मैं उन सब की बहुत बहुत आभारी हूं कि इतने गर्म मौसम में भी वो अपना मताधिकार एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आगे आके प्रतिनिधि चुन रहे हैं। कल का भी हमारा, क्योंकि अंतिम चरण है, मैं अपील करूंगी आप सभी से कि आखिरी दिन जो हमारा 89 पंचायत है वहां के जितने भी कंसर्न हमारे से मोरवासी हैं कल आए और आप अच्छे से वोट करें।
0: अकादमिक अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और

0: में हम कुछ कोर्सेज को ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत और ड्यूअल डिग्री भी स्टार्ट करेंगे। कुछ स्किल एनहांसमेंट के लिए वर्क करेंगे, एक हम ज्वाइंट जनरल चलाएंगे और कुछ हम कॉमन इश्यूज पे कुछ कंपेंडियम वो हम तैयार करेंगे। जो उनकी स्ट्रेंथ्स है वो हम लेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मिलकर के। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मैंडेट को भी ध्यान में रखा गया है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। सफर सुहाने गाने नए पुराने सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। कि चलो कोई निशान ढूंढते हैं, चलो कोई निशान ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई है मुस्कुराए हुए, चलो खुशी का कोई जहां ढूंढते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: सफर सुहाने गाने नए पुराने, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। के फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर कोई खुश हो तो क्या हुआ, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। के खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही, के खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही, कभी उसे मेरा घर ना मिला, कभी उसे हम घर ना मिले।

सफर सुहाने गाने नए पुराने, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। वक्त आपको बता दें शाम के 6:22:48। कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से, सफर सुहाने गाने नए पुराने। के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपना दिल दुखाना पड़ता है दूसरों की खुशी के लिए।

कि खुशियाँ छुपी है छोटे छोटे अरमानों में, पता नहीं क्यों ढूंढते हैं लोग इसे महंगी दुकानों में।

0: मी ये जमना ना दिख पे तिया बीच बीच बरखा का छिड़का भी हो गया थोड़ा बदल बुदल भी हो याद है ना पर तम भी दिख तिया जे काम कार करा दे पसीना पे याद आ मेरे वास दिया निकला था कुछ की जनते
1: हाँ बड़ा पसीना बहुत है घड़ी घड़ी दिख त्रिया लगा दी इं लगा भी पानी पीन ना जिया पेट ही भरोई है रोटी खाने की जरूरत ही नहीं बहुत ही फ्री
0: अजकल तो पाई गया दिखना जितना जे अहे पानी पीन तितना ही खरा ने तो लू लगा दी मे अस्ताले तो ढेर लगी आ दे भी अन्न माणुआ तो लगा दी पर माला जो भी लू लगी आ दी भी
1: हाँ मैं ठीक गलाया दिख माला पशुआ जो भी इस टाइम जे ऐसे टाइम टाइम पर पानी जे ऐसे पिलांदे रहना चाहिए कने तिना का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि माल पशु भी गर्मी बड़ी भारी मनांदे
0: बड़ी चेता दे में गर्मी पहले पहले तो मैं क्या कीते ना पे तिया जे भ्यागा बाहर बन्नी देना ना माल उतिया जे 8-9 बजे बड़ा तेज धुप आई आओ भी ताले दे गया जे ऐसे माल फिर अंदर बन्नी देना कने पखे दे लाई कने पाई पीता भी खुले रखू खिड़कियां भी दरवाजे भी अपर क्या हो पी माल अंदर अंदर में पूरा दिन भी कितना उड़ी रखना फिर मैं तीनों को लाया भाई दया करा ना पाई 4 मोड़ा गड्ढा ना कने घास जी छछर छुछर पाईते ना फिरी
1: अच्छा
0: कने इं तन टाइप जहा बनाई त्या कने फिर हूं माल जो मैं बाहर बन दी छोइया भी थोड़ी हवा भी लगती चौं पासियां ते ना कने धुप्पे ते भी बच रहा है भी आ
1: हाँ खरा कित्ते बोबो पे ही दिखना माला पशु जो अजकल सीधी धुप्पा ते बचाना चाहिए ता इस वास्ते जिया ते बोले ना पे छछरे छुछरे पाई ते
0: आ
1: हो ता तेड़े जे शेड जे से बनाई देना चाहिए
0: आ है वो उन पे टी नहीं पाएंगे घास है मैं बोले टीना पड़ गया पर तपना तक क्या
1: टीन ता
0: फायदा
1: तपी
0: है
1: आंदी
0: आओ फिर जेड़ा ना नाली दे पाए ना तिया है छछर जहा पाए तो पहले नाली दा ना वो तिस पर उपरा ते तिया उमरे अमरे बड़िया बैंज बूंज उत दे ते छछर गास ते सटी दे भी आता है महला जो भी देड़े हवा भी लगती रहनी ना कने छोई भी रहनी उपरा ते धुप्पा भी नहीं लगना
1: खरा किता वो बोए जेड़े जी घास फूस हुंदा ना कने छछर ता ए ठंडे भी रहंदे कने जे ज्यादा लगे ना पे बड़ी भर धूप होई यो कने बड़ी गर्मी ता अगर हां पानी दा भी छिड़काव करी देंगे ना ता फिर है ठंडी ठंडी हवा आंदी फिर ना चाहे
0: भाई अपी तो बचना जरूरी है ना इन्हें चीज़ों से माल भी बचाना जरूरी है हूँ घर अंदर दिखाए पखे लाए दे हैं तो लेंटर दे आता पता ना भाई अंदर बैठी नहीं होता तहाँ भी क्या कर दे पे बाहर निकली आ दे कुछ पछवाड़े खा बैठी आ दे भी छज्जेड़ तो ठंडी ठंडी हवा लगती मे तो तिया भाई माला का हिसाब है पे माल भी अंदर कितना कर गुत्थी ना रखना भी पूरा दिन
1: सही है ना कने जियो हम पानी दिखिए ना माला जो पानी पे आना तो हम ये अगर जिया उस च रखे होंगे ना ड्रमो ड्रुमो च तो है ड्रम का उबली ही होंगे बाल्टियां उबली ही आंदियां
0: आओ
1: तो हूं तो मैं तो माला जो सह कोरे घड़े है ना लंदे 3-4 ना सह ना लाए हो कने तीन जो रखती मैं रेत बछाई थी वो तू ना कने बड़े शैल से ठंडे ठंडे रह देता ठंडे पानी है माल बड़े चाय करने पींदा
0: दे पहले भी आंदे सियाने जी है ना बड़े बड़े मट रखते हे मिट्टिया दे अजकल तो आंदियां माला प्याने वास्ते ना कने चट्ठी होंदियां ही तिन्हें बनाई दियां तिन्हें च पानी जी ऐसा बिल्कुल ठंडा रहा हा मैं विदे कीती दा भई औदी जी इन्हें सिमिंटा दी बनाई दी
1: अच्छा
0: है छोइया ही है आंदी औदी ना पानिया दी तो तिस चीज जी है माला जो पानी जी ऐसे रखी दा कने तिथी ते जी ऐसे प्यादे ताकि माल जी ऐसे पाई ठीक रहे भी कने दिन च कम से कम भी 5-6 बार जी मैं पानी दसी आ दी माला जो
1: हाँ मी खरा खरा दिखना दिख पे चट्ठी का पानी जे ऐसे नहीं हुंदा इतना गर्म ना
0: हाँ
1: कने जेडी जे ड्रमो च हां पानी
0: और
1: पांदे है तो पर पारी गर्म हो जांदा दिया लगदा उबड़ी है पानी
0: कने धुप्पे तो बड़े भारी तेज है अगर हम माला जो कुती पानी इकट्ठा करने रखा दे भी आता है छोइया रखना ताकि माला जो जी ऐसे गर्मी नहीं महसूस हो अभी कने खाने पीने भी पाई हरा चारा जी ऐसे अजकल घट हों भी आ तो सौगी तिना जो दरड़ा है या फिर दाना मिश्रण है या फिर हाँ और चीजा तिना ताकती वाली देंदे तो सह जी ऐसे जरूर देनी है ताकि पशु जी ऐसे गर्मियों से सुरक्षित रहन भी
1: हाँ कने दिख साढ़े सियाने बुजुर्ग जे ऐसे अजकल मान लो जो नमक खुआंदे हे
0: हाँ
1: कने खनिज मिश्रण भी सह जरूर मिलांदे हे ताकि आहंदे माल पशु जे ऐसे डिहाइड्रेशन ते बची दे रहे ना अजकल तो पई है नमक जे ऐसे अजकल जरूर खिलाना चाहिए ना क्या कि इस ते त्या भी लगती रहती ना कने है पानी भी पींदे रहते माल पशु कने दूजा जे जिया खनिज मिश्रण मिलाई ते तिसते तीन जो पोषक तत्व भी मिली आंदे फिरी
0: बिल्कुल कने अजकल दे दिन ची पशुओं जो कम ते कम भी दिन ची 3 ते 4 बार जी ऐसे हम जो नुआना चाहिंदा भी आया ताकि तिना दे शरीर दा तापमान जी ऐसे बिल्कुल ठीक रहे कने कई बार हाँ क्या करते पे मैं असी जो नुआने वास्ते धीं तलाइया तलुईया होंगे कई बार तिना च ले आते भी हैं तो तिथि ये ध्यान रखना पई तला जे ऐसे ज्यादा गहरे नहीं होन पई है ना
1: हाँ कने ज्यादातर जाली जी नुआना नैना ना माल पशु
0: हाँ
1: धुप्पा का भी ख्याल रखना कई बार हाँ दोपहर पर ले आ दे जिससे भी गर्म सर्द भी हो सकता माल पशु
0: हाँ
1: तो भाई टाइमा का नैना भाई अगर हाँ जी चुगने भी नह दे भी कने माल पशु जो नुआना भी नह दे भी है टाइमा का ही नैना चाहिए।
0: बिल्कुल कने अगर लू लगी आओ पशुओं जो तो इसकी पहचान हाँ कि करनी पे पशु जो आ है जोरे जोरे ने सह लेना जो ऐसा शुरू करी आंदा फिर आंदा भी आया मुँह मत जो ऐसा लाल चुड़ना शुरू हो जाए भी अन्न पशु सुस्त पी आंदा भी आया घा पानी जो ऐसे छड़ी आंदा भी है कने शरीर का तापमान जो ऐसा ज्यादा बधी आंदा भी आ
1: बिल्कुल तो ये जे लक्षण सुजन ना तो एकदम पशु जो छोवा च जो ऐसा ले आना चाहिए कने पशु के शरीर पर ठंडा पानी जो ऐसा पाना चाहिए कने गीले तौलिए कने तिना के शरीर जो पूंजना चाहिए कने फिर एकदम बिना देर किते ही नेड़े का कोई भी पशु चिकित्सक है उस कन्ने संपर्क करना कने तीदी सलाह जे ऐसा जरूर लेना चाहिंदी
0: जी बिल्कुल अजकला ए या पे लू लगने ते अगर हां पशु बचाने भी अन्न कने दूध उत्पादन जे ऐसे भी आंदा ठीक हुआ तो इस वास्ते पशुओं दी देखरेख जे इसे तो पाई जमना जो दाए रखना ही पौंदी भी दे थोड़ी नहीं आपे घास सट्टी आए भी अन्न पानी दसी आए भी अन्न तो आंदा काम जे ऐसे मुकी गया अजकल जी आस है गर्मियों का भी ध्यान रखना चाहिए पे पशुओं जो अगर अहाँ हो सके तो गोडे पखे वगैरह जी ऐसे लगाए देना चाहिए भी हैं कच्चे गोड हो तो दिखे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती
1: ऐसा तो ठंडे रहेंगे ना कने अगर जे पक्के हैं ना तो पक्के गोडा जो ऐसे जरूर पखे कने कूलर जो ऐसा लगाई देना चाहिए ताकि यहाँ के माल पशु भी गर्मी जी ऐसे ज्यादा नहीं चेतन
0: तदे है ना पूजी आई हूँ घर कहना तेरा गोड़ तो गया आए ना भाई तो हूँ तो तू करना होगा माला मूला का काम कने आऊ भी मैं चलती घर खा दिखती हूँ कर दी कुछ काम बुतू चलना है
1: मैं चली पौंदी दिखी लेंदी माला का काम है ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और आरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: भक्ति संगीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है यशुदास राजेंद्र वर्मा और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है बहू की आवाज़।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति यतीम फिल्म से।

0: इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफ एम 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफ एम 101.8 MHz पर शाम के 7:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां।

0: आई आई है गुलाबो
1: आई गो डते
0: आई गई, पर तू तो बोला पे मिंजू बड़ा भारी काम, तू हूं ही गई हूं ही हटी ने आई।
1: हाँ फिर तो फेर गई कन, फिर तो फिर हटने आई है।
0: हाँ भाई क्या कमाई आई दे आ?
1: ओ मैं कुछ नहीं कमाए नहीं आए, भी सारे समान चलाए दा है ना घरे रखने, उस रखे ना दाए अलमारी ची कने, फिर मैं लसूड़े हे तुआरी दे देने।
0: अच्छा अच्छा
1: फिर मैं बोले ना जमना जो दे आंदी अद्धे जे हे सा, मैं ताली तुम बिना रखी है ना सा, मैं बनाने हूं। पर मैं बोले ये जमना जो दे आंदी ने तब पे आगा जो मैं अद्धे खराब हो जाते।
0: खरा कीता ते खरा कीता, दिख इन्हां दा मैं पाई लेना चार ना,
1: हाँ
0: दिख बथेरे है ना, मैं ही रखे थोड़े दे ना, मैं चार बनांगे तो बड़े टाइम खाई सकते फिर यहाँ है ना यो।
1: बड़ा बांका चार हुंदा खट्टा मिठा सदा कने, पाई मिंगे तो सब्जी भी बड़ी बांकी लगदी पे, रोटी भी रज्जी ना खोई आंदी ना कने, तसीर भी दिख ठंडी हुंदी अजकल, ता अजकल ये चीजा खाना चाहिदियां।
0: कने दुआ मी ये साल बाद मिलने फिरी, कने दूजी गल की कुछ पाया नहीं हुंदा, कोई रसायन दा छिड़काव नहीं कुछ नहीं, एड़ी छैल सब्जी है ना बांकी।
1: और जरा कर तू इस ची अंब चूर सट की, अंब भी पाई कद्दा कटी ना कच्चा कने, थोड़ी जे पाई दे चीनी, मैं दिया खट्टा मिठा स्वाद आंदा ना पे, इया ना मत लै बे पानी आ जाता मुँह च मेरे च,
0: हाँ जाली बनांगी ताली तीजो बिच खांगी ना।
1: बनाई लैना मैं घरे रखी दे ताली, तुम भी नहीं जाने सब्जी बनानी, तू तो चार बनाना है तो पता नहीं किधर गया खुआना तू।
0: ना ना मैं कल बनाई देना, दिख मेड़े जे काम पायो ना, ओ दोपहर जी आई ही तू मुन्नू हगला दा पे आई ही
1: ओ
0: गुलाबो।
1: मैं बड़िया भारी आका पाई कने, फिर मुन्नू बड़गे देरे निकले बाहर आज, बोले मम्मी नहीं घरे एक तो पख्या पुख्या लाए रख दे पाई, अजकल सुना भी नहीं आ।
0: हाँ तो मैं गई ही मिये ओ पारली चाची ना, जिन्हें बोलिया हाँ ते बड़िया पाइया कने मिंजो दे ही दिया, कने फिरी
1: अच्छा
0: मैं आज कल कर दी सै, आज मैं बोले दोपहर पर दही होनी फटाफट। अच्छा
1: हाँ
0: तू पकड़े कने दही आई मैं तिहे बड़िया फटाफट ना।
1: खरा होया पाई दे आई ना, पर इबे ते मिंगियो नहीं दीतियां भी, क्या थोड़ियां कर पाई दियां ते हैं।
0: ना ना मैं बड़िया भारी पाइया तू ले ये हैं। मैं बोला कोई आखे बखे होंगे तो तीजो भी दे देनी, बथेरिया बड़िया पाई थी तीजो, पता पे एक बार चीज पानी ना तो खुले दिले पाई लेनी फिर कट्ठी।
1: मतियां बनाई ती दियां होंगी ना, तो है तो दिया करें पाई मिंगो दे दिया 2-3 किलो ना तू, कने ज्यादा ही होंगे तो बेची ही लेंगे उत्थी गलगे च बैठ गई, उपर में अपने ग्रां बथेरे खरीदी लैनी है कने, 2-3 ग्रां और भी सौगी सौगी तो ना बथेरे खरीदने ले आते लोग।
0: ओ मी ये कुती बेचनी है कलिया मैं इथी।
1: आओ चली भैंगी तिगो ने सौगी दिया ना, गां बरसाती खराब नहीं होने चीजा तो दिया बेची लैनी है, पर एक गल दस वो खुशबू बड़ी डुआई दी तो मुस्क जे कह दी आ दी।
0: ये सीरा है पाना लाया ना
1: अच्छा
0: कने, दिख पे आजकल गर्मी है बड़ी पारी,
1: अच्छा
0: ता प्यागा जो पानी पा दे ना तो फिर है संजा जो बदलना पौधा, फिर पानी बदलिया मैं ना फिर दोबारा फिर पाया ताजा फिर
1: अच्छा
0: प्यागा फिर बदलना।
1: इस पानिया दी याद मैं पाया ना सीरा 2-3 दिन ची कणक जे इसे बड़ी बांकी फुली है भी कने, मैं ता दे आके 3 दिन जे इसे पी लिया भी है फिर।
0: मैं भी एड़ा ही सोचा दी ही ना, मैं भी कल जी ये पाया हा तो मैं बोला नहीं हूं आज का दिन तो रहना देना ना,
1: आओ
0: कने जे मिंजे लग गी कि कल पे आने वाली होगी तो फिर पी लेनी।
1: भाई देखे ये 20 साल दे त्योहारा हाई हुंदे, एक त्योहार है पीने जे आस यहाँ रखी लैने ना सारिया चीजा, तो भाई पूरा साल खांदे कने, तौंदिया तो तियां जे उल्टियां लगियां या दस्त लगे तो थोड़ा जे सीरा जी ऐसे बनाए ने दे दिया तो बड़ा आराम मिलता, ठंडिया तसीरा आ जाता है।
0: हाँ ताई तो अजकल पाई लेंदे ना, हाँ कने फिर पूरा साल जे ऐसे चली पौंदी चीजा, दिख सही भी पानी है ना। मैं हूं तो मैं सोचा दी भी कोई मिली आए मिंजो तो एड़ा करे कल आई है ना, कने कल बनाई लेंगी दोनों जनिया सहीया।
1: ना तू कल क्या क्या काम करना, तू सीरा पाना कि तू कल सेइयां पानी है, तू एक ही कम्मा मुकवाई लेना पहले फिर दूगे कम्मा कर गईया।
0: ओ मी ओ आंदे कट्ठे मिली ने काम नहीं तो ये है भाई, एक भी रही आंदा काम कने दूआ भी रही आंदा तो सुकाने खरा हो जाता फिर सारा कट्ठा।
1: हाँ सीरे पाने तो देड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगता भी है ना, तो चलो हूँ मशीना चल पेदियां तो पीते छोड़ छोड़ता बनी आता, पहले हों उखलों च जी आ पी पी ने मे बाहें पई आंदियां थी पे।
0: हाँ सीरे जो नहीं लगना टाइम है ना, पर सेंगे जो तो टाइम लगना पाई हूं है, मशीन तो चलाना भी पौनी फिर
1: जोर
0: आपू।
1: लगता थी ताई जमना सोचा दी पे गुलाबो आई आंगी तो मैं बची दिया रहना, जोर नहीं लगना मेरा।
0: ना भाई तू एड़ा करे पे थोड़ी देर तू चलाया मशीना कने थोड़ी देर मैं चलांगी ना, फिर एन सारिया सहीया पाई लैनी पे पूरा साल ले हो जानी है, सह नहीं बेचनी है आपू जो पानिया। हाँ
1: हाँ भाई ये तो गल है, बांकी गलाए भी ना फिर दिया हुंदा, मैं कई बार दिल करदा भी इन्हां चीजां खाने जो ना, ता आहां बनानियां भी कैस दियां पे, आटा पाना ना थोड़ी जी पानी सूजी कने मैदा जी ऐसा घट पाना, मैदा बड़ा भारी नहीं पाना।
0: हाँ तो तेड़ा कर लेंगे, आई
1: हाँ
0: है तू टाइम में देना फिर दस दी रहे हैं पे किन्ना किन्ना क्या क्या पाना ना, कने उस हिसाबा ने पाई ਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲੀ ਨੇ ਭਈ ਇਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਈ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਛੋੜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ।
1: ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਆਸੋ ਵੀ ਸੱਦੀ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾ ਦਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸੱਦੀ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਨੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੱਖੇ ਹੇਠ ਕਦੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਲੈ ਦੀ ਸੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੇ ਜਣੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ।
0: ਤਾਂ ਗਲਾਈ ਲੈਂਗੀ ਤੀ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਉਹ।
1: ਹਾਂ
0: ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਪਉਂਗੀਆਂ, ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਲੈਂਗੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ।
1: ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆਣ ਦੇਖਿਆ ਪਤੀਲੂ ਚੱਕੀ ਨਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੀ ਭੀਣਾ ਸੀਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇੜਾ ਨਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰਾਗ ਪਈ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੀ ਬਜਾਉਂਦਾ।
0: ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗਲਾਇਆ ਤੈ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौन का ग्राइंदिया, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 7:45 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश में 16 जून से शुरू होगा जनगणना 2027 का पहला चरण। डिजिटल तकनीक से पहली बार होगी जनगणना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए कल प्रदेश की 1187 पंचायतों में होगा मतदान। सभी तैयारियां पूरी। पीएम विकास योजना के तहत प्रदेश के 2420 युवाओं व महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस बीच एशियन कुराश कप सीनियर वर्ग के कांस्य पदक विजेता सौरभ सुमन ने भी आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। सौरभ सुमन ने 22 से 25 मई तक उज्बेकिस्तान के नुकुस में आयोजित एशियन कुराश कप प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ सुमन की ये उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को खेलों और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और स्वगणना की सुविधा से लैस होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनगणना पर 86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दीपशिखा शर्मा ने कहा कि पहला चरण मकान सूचीकरण व आवास गणना का होगा, जो 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, जबकि इस बार नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए 1 जून से 15 जून तक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध रहेगा, जहां परिवार स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले चरण के सफल संचालन के लिए लगभग 20,630 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।
1: हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है, मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुँच कर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं 16 जून से 15 जुलाई के भीतर। तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे, उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी के मैच करने पर जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। मैं हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वगणना करके इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें।
0: प्रदेश में कल 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। उधर सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि कल अंतिम चरण में जिले की 89 पंचायतों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।
2: इसमें हमारी टोटल 89 पंचायतें रहेंगी और 515 वार्ड्स रहेंगे जहां कल मतदान किया जाएगा। अब तक का जो मतदान हमारे दो चरणों में रहा है वो काफी पीसफुल रहा है। लोग भारी संख्या में आए हैं मतदान देने के लिए। मैं उन सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने गर्म मौसम में भी वो अपना मताधिकार

0: को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आगे आके प्रतिनिधि चुन रहे हैं। कल का भी हमारा क्योंकि अंतिम चरण है, मैं अपील करूंगी आप सभी से कि आखिरी दिन जो हमारा 89 पंचायत है वहाँ के जितने भी कंसर्न हमारे से मौरवासी हैं कल आए और आप अच्छे से वोट करें।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 2420 युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास व उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज शाम के समय तेज वर्षा व ओलावृष्टि होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। शिमला जिला के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं अत्यधिक ओलावृष्टि से सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत ली है, लेकिन ओलावृष्टि से कई भागों में सेब व दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। शिमला जिला के खड़ापत्थर और रोहडू जबकि मंडी जिला के करसो के डींग व कथेड़ में ओलावृष्टि से सेब की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए लगाए गए एंटी हेलनेट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कल भी किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में आंधी तूफान व ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: अकादमिक अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। ये समझौता राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत किया गया है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि इस MOU के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कई अकादमिक और शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।
3: आने वाले समय में हम कुछ कोर्सेज को ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत और ड्यूल डिग्री भी स्टार्ट करेंगे। कुछ स्किल एनहांसमेंट के लिए वर्क करेंगे, एक हम ज्वाइंट जनरल चलाएंगे और कुछ हम कॉमन इश्यूज पे कुछ कंपेंडियम वो हम तैयार करेंगे। जो उनकी स्ट्रेंथ्स है वो हम लेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मिलकर के। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मैंडेट को भी ध्यान में रखा गया है।
1: प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते वनों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश भर में वनों में आग लगने की अब तक 263 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 3328 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार वनों में आग लगने की घटनाओं से करीब 82 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। मंडी सर्किल में वन अग्नि की करीब 87 घटनाएं दर्ज की गई हैं और 513 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश में 16 जून से होगा जनगणना 2027 का पहला चरण, डिजिटल तकनीक से पहली बार होगी जनगणना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए कल प्रदेश की 1187 पंचायतों में होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। पीएम विकास योजना के तहत प्रदेश के 2420 युवाओं व महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।

0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM FM 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर रात्रि के 8 बजने को है। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: लीजिए, सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, अब तो ये बोतल ही है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई?
0: अरे कौन सी मुसीबत?
1: हाय, अब मैं तुम्हें स्टैंप पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर टोली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अजी वही जो रोज होता है, मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है, मैंने क्या किया है?
0: अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या अर्ज है?
1: अजी तुम्हें तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोच कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है, अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था। और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में, पहचानना मुश्किल हो जाता था।
0: यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहा। अरे मां कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो, तो तुमने क्या जवाब दिया?
1: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है हाय हाय, 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
0: अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
1: कि क्या, यानी कि मैं बहू को जला दूं?
0: अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही है और बहू से छुटकारा पा रही है।
1: हाय हरीश के डैडी, मैं सदके जाऊं तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी।
0: अरे तो फिर सोच क्या रही है, नेक काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू पर हल्ला बोल दो, पका।
1: नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, फांसी हो जाएगी।
0: अरे इसका मतलब है हरीश की मम्मी तुम्हें उस नए केरोसिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है। ये देखो
1: क्या है, बहुओं को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल। क्या मतलब?
0: अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा? उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा? तो फिर ये बताओ माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी।
1: अपने आप जल जाएगी? अरे हरीश के रेडी, फिर तो मैं 1-2 घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी, मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
0: अरे ठहरो तो सही, हरीश की मम्मी।
1: हाँ बोलो।
0: बात तो सुनती जाओ। हाँ, हरेक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
1: हाँ ये तो सभी को पता है।
0: जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा।
1: हाँ। तो फिर?
0: अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो। अच्छा? दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार। हाँ, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं उससे प्यार करती हो। हाँ। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा।
1: अरे वाह, क्या तरकीब है।
0: अरे लो, अब बहू जी आ रही है।
1: हाय पिताजी।
0: क्यों बहू, अब क्या हुआ?
1: क्या नहीं हुआ, जो इस घर में हर रोज होता है आपको नहीं मालूम?
0: अरे बेटी रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
1: आज फिर माताजी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया, और जब मैंने पूछा कि क्या बात

0: घर में कुछ कर सकती हो।
1: आपका मतलब है?
0: अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
1: नहीं, ये कैसे हो सकता है पिताजी? एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती है?
0: क्यों नहीं जला सकती? वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है।
1: पिताजी, जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है, दुल्हन नहीं आती, जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है, दूल्हा नहीं, उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती।
0: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
1: नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है, मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
0: इसका मतलब है बहू, तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो,
1: सास को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल, क्या मतलब?
0: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है।
1: अच्छा?
0: उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा?
0: हाँ?
1: तो फिर माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे। हाँ, उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी।
1: अच्छा, ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर किटी पार्टी रखा देती हूँ। मैं एक घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी, और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी अटेंड कर रही होंगी, उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी।
0: अरे ठहरो।
1: क्या हुआ पिताजी?
0: हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
1: हाँ, ये तो सभी को पता है।
0: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी, पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
1: हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती, उससे प्यार करना शुरू कर दो।
1: प्यार?
0: हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
1: प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
0: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
1: अच्छा ठीक है पिताजी।
2: राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम।
1: तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूँ।
2: राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी, आई माता जी।
1: जी माता जी।
2: बहू, कहाँ थी तू?
1: मैं यहीं तो थी माता जी।
2: बेटी, तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
1: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं।
2: बहू, तू ठीक तो है ना?
1: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
3: वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया क्या?
1: क्या कहा माता जी, चक्कर?
3: कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बैठ जा, बैठ जा।
2: चक्कर तो नहीं आ रहे ना?
1: चक्कर? मुझे चक्कर क्यों आएंगे?
2: आएंगे बेटी, आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को।
1: 6 महीने शादी को हो गए? तो क्या हुआ माता जी?
2: वो
1: अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
2: मैं? मुझे क्या हुआ है?
1: आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
2: मेरे घुटने क्यों कांपेंगे?
1: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है ना? लाइए माता जी, मैं आपकी घुटने दबा दूं।
2: नहीं, बहू रहने दो, रहने दो।
1: लाइए ना माता जी, लाइए।
2: अच्छा, आ बहू रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
1: मेरा बस चले तो घुटनों की बजाय इसकी गर्दन दबा दो।
2: क्या कहा बेटी?
1: कुछ नहीं माता जी, मैं टांगे दबा रही हूँ।
2: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, मैं इसे जीने दूंगी तब ना।
1: माता जी आपने कुछ कहा?
2: नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ।
1: कथा?
2: जब कोई प्राणी संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
1: ये आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे इस बुढ़िया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली है?
2: क्या कहा बहू तुमने? कुछ
1: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी आप अच्छी बनी हैं, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का।
2: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
3: बहू
1: जी,
3: एक बात बताओ
1: जी,
3: तुम तो फिल्में देखती हो ना?
1: जी हाँ।
3: अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
1: जब उनका दिल धक धक करने लगता है।

0: उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है।
1: अच्छा?
0: वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती
1: हाथ है। पकड़ लेती है।
0: हाय,
1: मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है।
0: माता जी, मेरा भी।
1: बहू, मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है?
0: अच्छा,
1: ठहरो जरा।
0: बहू,
1: न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
0: माता जी,
1: ये लो बहू, पहन लो इसे। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
0: ये क्या किया आपने माता जी?
1: क्यों?
0: ये हार आपने मुझे दे दिया?
1: हा?
0: इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
1: मुझे खुद पता नहीं बेटी, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है? लगता है शायद,
0: शायद क्या माता जी?
1: शायद शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहू।
0: ये क्या हो गया है आपको? एक सांस होकर बहू से प्यार करने लगी है?
1: हाँ बहू, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे।
0: माता जी, मुझे भी होता जा रहा है।
1: क्या हो रहा है बेटी?
0: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
1: अच्छा, आओ बेटी, मेरे गले लग जाओ बेटी।
0: माता जी,
1: मुझे माफ कर दो बेटी।
0: माता जी,
1: मैंने तुम्हें धोखा दिया है।
0: माता जी,
1: मैंने तुम्हें जलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है बहू।
0: आए आए माता जी, मुझे भी माफ कर दीजिए माता जी, मैंने भी आपको धोखा दिया है। मैंने भी आपको जलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है।
1: यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है?
0: माता जी, वो हम दोनों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
1: नहीं बहू, मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगी।
0: माता जी, मैं भी आपको नहीं जलने
1: दूंगी। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है बेटी। मैंने इंस्पेक्टर को भी फोन कर दिया है।
0: माता जी,
1: मैंने फोन कर दिया है उन लोगों को बेटी। अब हमें इस दुनिया में कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम जिएंगे तो एक साथ, हम मरेंगे तो एक साथ। दुनिया की सासों एक हो जाओ, अपनी बहुओं को गले से लगाओ।
0: दुनिया की बहुओं एक हो जाओ, अपनी सासू जी से प्यार बढ़ाओ और अपने ससुर जी से खबरदार हो जाओ।
2: बताइए बताइए, एक बार क्या बात हुई? क्या, कौन बीमार है?
1: अम्मा, ये मेरे घुटने कांप रहे हैं। मुझे क्या हो रहा है बेटी?
0: आपके घुटने कांप रहे हैं, यानी आपको केरोसिन का असर हो रहा है।
1: मैं जा रही हूँ बहू, मैं जा रही हूँ। मैं बने नहीं सकती।
0: नहीं, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा माता जी। माता जी, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ।
1: नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचाइए।
2: बचाता हूँ,
1: मेरी सासू जी को बचाइए।
2: सासू जी को? बताइए आपको क्या तकलीफ?
1: मेरी बहू को बचाइए।
2: बहू को?
1: मेरी सासू जी को बचाइए।
2: ये क्या हो रहा है? कितना किसको जलाया ये बताइए।
1: इंस्पेक्टर साहब, मेरा बयान लीजिए।
0: नहीं नहीं,
1: मैं झुंड का एक बात करना चाहती
0: हूं। इंस्पेक्टर साहब, माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैंने इन्हें जलाने की कोशिश की है।
3: इंस्पेक्टर साहब, किसी ने किसी को नहीं जलाया। हाँ, इन बोतलों में केरोसिन नहीं, गुलाब जल है। गुलाब जल?
1: क्या?
3: सारे घर में प्यार की वर्षा हो रही है। सास और

तो ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक V.M. आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

चित्रलोक कार्यक्रम में मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म राज 2 से। गीत संजय मासूम का है, संगीत जीत गांगुली का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए अब सुनते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना पलक मुछाल की आवाज में। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत अमाल मलिक का है।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म ब्रेक के बाद का ये गाना, मोनिका डोगरा विशाल दादलानी की आवाज़ में। गीत प्रसून जोशी ने लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krastev also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
4: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
3: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers.
5: Save the Farm campaign, Khet Bachao Abhiyan, this cannot run without you. From June 1st to June 30th, all of you will also have to step out. I will also step out. You should also step out and tell the rest of the ministers, central ministers, public representatives and MLAs that they should also step out. Everyone will have to go. Let the public representatives lead this. How much fertilizer, which pesticide, whatever the requirement for pesticides is, we will reduce it and eliminate it.
3: The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
6: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations, and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
3: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, she said 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. Director, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma said that a merchant vessel, Nisos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz.
7: A merchant vessel, Nisos Keros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25-26 and is bound to arrive at Vishakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 2,70,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian seafarers.

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मजबूर फिल्म का गाना। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर हैं आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ, उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था, लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक़ लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई, और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया, और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।
2: मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज़्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज़ के ज़रिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम ज़रूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मक

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं, तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना ज़रूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगेई राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में। ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तरनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम

0: ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहाँ से आप उतर के फिर नीचे दो फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें 6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे। और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था, और जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहाँ लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब ने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज़्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है जो जिंदगी भर याद रहे।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म दस, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म दस में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की तीन फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग मालकौंस।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिल में तेरी चाहत लबों पे तेरा नाम है, दिल में तेरी चाहत लबों पे तेरा नाम है, तो मोहब्बत कर या ना कर मेरी जिंदगी तेरे नाम है।

मंजिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो, उम्मीद हो तुम, आस भी तुम हो, इश्क भी तुम हो और जुनून भी तुम हो, एहसास तुम हो और प्यास भी तुम हो।

बताने की बात तो नहीं पर बताने दोगे क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे मुझे हक जताने दोगे क्या।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का चांदनी रातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: उसमें धुंधली सी कहीं मेरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:05 हुए। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।